क्रोध अहंकारा यही जम की सिरकार है। इना ऊपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन

रस भोगी आप अतीत अलिपत है निर्योग हर योगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम त्याई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए वाह वाह सिफत सलाहा है।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

ना जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुखे अमृत चाखिया से जन तृपताता। सलोक महला तीजा वाहो वाहो तिसनो आखी जे सच्चा गहर गंभीर वाहो वाहो तिसनो आखी जे गुणदाता मत धीर वाहो वाहो तिसनो आखी

दुख सहाय नानक गुरमुख उबरी सच्चा शब्द सुमाही पौड़ी ताडी तिसनो आखिया ये खसम तरे प्यार दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार ताडी दर कर पाए सी

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णो महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसै उधारदा जिस दे

तालुक महला पंजवा नदी तरंदड़ी मैंडा खोजना खुंबे मांझ मोहब्बत तेरी।

मतवन्य मित्र असाढ़े से कौट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भौ कटिया जन का शब्द जप बन

भूख दर्द वड रोग ना पोहे तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर।

बेसवा जून वल वल अवतरे अंत काल जो लड़के सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे सूकर जोन वल वल अवतरे अंत काल जो मंदर सिमरे ऐसी चिंता मह जे मरे प्रेत जोन वल वल अवतरे

प्रमाद पुरुख मनोप इमंग सत आद भाव रतन परमद पुतंग परकृत परंग जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयंग नाद नोत जसमरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाउ इस जमाद परा भयं जस स्वस्थ सोकृत कृतं पाव भूत भाव समभ्यं परमंग प्रसन्न मिदं लुबाद दृष्ट परग्रहं जद विद आचरणं तज सकल दोह कृत दुर्मति भज चक्र धर सरणं हर भगत निज निह के

ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर भाई ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे फिर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल पावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार रहाव लोकन की चतुराई उपमा ते बै संतर जार कोई भला कहो पावे बुरा कहो हम तन दियो है तार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मरार देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी देख देख जीवा साध गुर दर्शन जिस हृदय नाम मरारी रहाओ तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी हम क्यों कर मिल है जूठारी हम रह जिये होर मुख होर होत है हम कर्महीन कूड़ियारी हमरी मुदर नाम हर स्वामी हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति ज्यों बेसवा के करपूत जमत है तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाव जिनका हृदय नाही हर स्वामी ते बिगड़ रूप बेरक्ति ज्यों गुरा बहु बातां जाने ओह हर दरगाह है प्रस्ति जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी तिन्ना साध जना पग चकती नानक पतत पवित मिल संगत गुर सतगुर पाते शुक्ति छका एक देव गंधारी महला पंजवां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद माई गुर चरणी चित लाई है।

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सुबा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े।

सेवा दर्शन दुख अवतारियो नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारियो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारियो माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाओ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया परम अंधेरा लही।

महाकिल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ जिन पिया तिस सिमर प्राणी यो प्राण जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावह मर जन्मह मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राख हो राखन हारा करण करा।

देव गंधारी पंजवा मन गुरमिल नाम अराध्यो सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भाद्यो रहाओ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पाद्यो भाओ भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साध्यो भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ लाद्यो बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगाद्यो देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसुम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर माने बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभु ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंध

अवतार हर बैकत हर हर सूवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मजन कीनू साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्स समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया आप दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए।

पाए, छोड़ न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए, अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए, कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भये प्रभ अपने, बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ। साध संगम गुण गाव है हर के, रतन जन्म नहीं हारियो। प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया, कुल है समूह उधारियो। चरण कमल बसिया रिद पुत्र, तास ग्रास उचारियो। नानक उठ गही जगदीश, पुनः पुनः बलिहारियो।

चार बरन मुक्त भय देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया द्वितीया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर सेवा।

तहाल काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रवियारे रविया सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मजार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गोहर की को द्वार मिल संगत ताज अभमान

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अरसादक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचरत दिन रात

रहाउ। मद माया कै भयो बावरू, हर जस नह उचरै, कर पर पंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। समान पूछ ज्यो होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नावा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीर्थ प्रेत पकार। आद करी को नह राख, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यो जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं की।

पोयंगन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहु बंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिये अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक को करई राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

निंदड़िए हर अमृत हर तरना राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

लड़िए भिख पौ जल तारन हारू राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जय कारू राम नानक हर जप सुख

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झाख मारन।

तिनकै संग मल उतरै मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानक की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अगाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर कृष्णा जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए इस मन नाम वसाए राम जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए।

जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सूबा पाइये जिनको बधाते तुरहु लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाइये हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधी जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादी कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

मेल कंत हमारा लाख उलहने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करूं उपाव किस हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रिय बिन कमन विधि ना धीजी है खान पान सिंगार बिरते हर कंत बिन क्यों जीजी है आसा प्यासी रैन दिनियर रह ना सकी है एक तिल है नानक पयम पै संत दासी तो प्रसाद मेरा पिर मिले सेज एक प्रियो संग दर्शना पाईए राम अवगन मोहे अनेक कत महल बुलाईए राम निर्गुण नमाणी अनाथ बिनवै मिलहो प्रभ कृपा दे दे भ्रम भीत खोइए सहज सोइए प्रभ पलक पेखत नाम ने दे ग्रह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइए नानक पयम पै संत सरनी मोहे दर्श दिखाइए संतन कै प्रसाद हर हर पाया राम इच पुन्नी मन शांत तपत बुझाया राम सफला सो दिनस रैने सोहावी आनंद मंगल रस घना प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कवन रसना गुण भना भ्रम लोभ मोह विकार थाके मिल सकी मंगल गाया नानक पयम पै संत जंपै जिन हर हर संजोग मलाया बिहागड़ा महला पंजवां कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे अन दिन नाम बखाना राम अमृत बाणी उच्चरा हर जस मिठा लागे तेरा पाना राम कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना समरथ अगत अपार पूरन जियो तन धन तुम मना मूर्ख मुग्ध अनाथ चंचल बाल ही

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निदहर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वडभाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर

जो जन प्रभ सिउ रातिया, एक जन है एक मन है, राम कै रंग मातिया, लग संत चरनी पड़े सरनी, मन तिना उमाहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, से सच्चे साहा, नानक सोई सिमरिय हर जियो, जाकी कल धारी राम,

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वद सुख रैनड़िए प्रिया प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुर्मत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी

चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाईए प्रभ त्याईए, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागने सब रंग माणी, रांड ना बैसे प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बडभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच्छ पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उदारनु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तारनु, जो सरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

करहु निवास मन करमज्जन हर सरी सब किल विख नास मन कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे मिल साद संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम मिल संत गावह खसम भावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइय पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किश कहन ना जाई राम जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया

सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊचे अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के, सदा फिर तुदुहेली, तू बलवंच लूक कर है, सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाने दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू, आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया, भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे, किरत घन विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया, तपत थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापिया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखन हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दुख कर कर जोरी नानक सरन

स्वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊणे काम पुत्र कलतरना संग शोभा हस्त घोर विकारी बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी राजन क्यों सोया तू नींद भरे।

आए गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़िए। श्लोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाम वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातमा दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहे निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राहत आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बह खावे आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुली परावे आपे संगत सद बहाले आपे विदा करावे जिसनो कृपाल हुए हरे आपे तिसनो हुक्म मनावे। श्लोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंधना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंधना पुत्र कलत्तर सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

सच वसै अज्ञान अंधेरा जाई। सब किस देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक सरन करतार की करता राखै लाज। पौड़ी

खंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुखदाता।

हर स्यों प्रीत उपजे माया मोह जलावे गुर प्रसादी दुखदा मरे मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके मर जमे होए खुआर महला तीजा प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी मेरी प्यास ना जाए नानक सतगुर मिले मेरी प्यास गई फिर पाया घर आए पौड़ी आपे तंत परम तंत सब आपे आपे ठाकुर दास भया आपे दस अठ वर्ण उपायन आप ब्रह्म आप राज लया आपे मारे आपे छोड़े आपे बख्शे करे दया आप अभुल ना भुलै कब ही

हुई। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हुए। महला तीजा, क्या जाना किव मरहेंगे, कैसा मरना होए,

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्म बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सबको वसै भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार

तृप्त भई हूं तिन बलिहार जाऊं। मैं की नदर ना आव ही वस है हपिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर भीतर पाल। नानक तेरा बाणिया तू साहिब मैं रास मन ते धोखा ता लह जा सिफत करी अरदास। वडहंस महला पहला गुणवंती सोहरावया

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तै सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरू वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ केहो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागणी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम ते आए सतगुरु मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए।

मिलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाई, नाम परमल हृदय रहया समाय, नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग।

मन आए परमे भूला फिर संसार मर जन्म जम करे खुआर नानक से बड़ भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्द समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेस करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन फिर रावड़ा सच सवरा हौ जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्रभ मेरा मैं ऊपर नदर करी फिर साचे मैं छोड़ियाड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करहो हर प्रभ का इत मार्ग भैने मिलिए अपनड़ा प्रभ नदर कर देखे नानक जोत ज्योति रलिए जो हर प्रभ का मैं दे सनेहा तिस मन तन अपना देवा नित पक्खा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सत गुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा गुर सत गुर पासो हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा नानक जित

रहा। सो हर हर सदा संभाली, सो हर हर नाम सदा सदा संभाली, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवां घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावै, एक तिल ताका महल ना पावै, सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाउ, लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है, लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पुगीसर भोग है भोगा, कट कट वस है जान है थोड़ा,

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभ दाते, जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, बड़ा हंस महला पंजवा, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जाल काल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, बड़ा हंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हम सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

साध संग हर अमृत पीजै ना जियो मरै ना कबहू सीजै वडभागी गुर पूरा पाइय गुर कृपा ते प्रभु त्याय रहाउ रतन जवाहर हर मानक लाला सिमर सिमर प्रभ भये निहाला जत कत पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना कट कट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा वडहां।

अंतर भूख ना उतरे अमाली, जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन तीरे, सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई।

तार संभाली, मैं निर्गुण कौ रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कितै ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हों वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

सच्ची सच रती तन मन सच्चा होए बिन साचे होर सलाहना जस है जन्म सब खोए सच खेती सच बीजना साचा वापारा अन दिन लाहा सच नाम धन भगत भरे भंडारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे।

सब उपाय ने आप आपे नदर करे वडहंस महला पहला करहु दया तेरा नाम बखान सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तमे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ पिया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड मुग्ध

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारी सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द सुमाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सुवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये फिर रव रहे पर पूरे राम फिर रव रहे पर पूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली फिर सहज रावै मिलिया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही पर पूरे नानक कामन सा फिर पावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज घर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हूं मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

पारा, खोटे खरे सब परखियन, तित सच्चे कै दरबारा राम, खोटे दरगहा सुटियन, उभे करन पुकारा राम, उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा, मनमुख जन्म गवाया, विख्या माया जिन जगत पुलाया, साचा नाम ना पाया, मनमुख संता नाल वैर कर,

रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रुबीजै नानक नाम रते से निर्मल होर हऊ मैं मैल परिजै पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पह करह पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जगत प्यारा आवन जान दुख पाई बिख का कीड़ा बिख स्यो लागा बिष्टा माही समाई जो तुर लिखिया सोए कमावे कोए ना मेटन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया और मूरख कूक मोए गावारा माया मोहे मन रंगिया मोहे सुध न काई राम गुरमुख इहो मन रंगी है दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई साच समाई सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणे, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है।

सकै कोई। जिन श्रेष्ठ साजी सो कर वेखै, तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै, बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला, माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै, भज पय हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगै।

आए। जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गासे, हर नाम नमंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसे। हौ जीवा हौ जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा तिस काट शरीरा राम, हौ मन तन काट काट तिस दे, जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग भया बैरागी, मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुख दाते, देहो सतगुर चरण हम।

वै हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम भओ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुरबिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हो ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया।

खाई, किस बिन कड़ी निमक नहीं जीवा, हर हर कृपा करे सुख दाता, गुरमुख अमृत पीवा, हरे आपे शरदा लाए मलाए, हरे आपे आप सवारे, हों वारी गुरसिख मीत प्यारे, हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम, हरे आपे मेलै करै सो होई राम, जो हर प्रभ भावै सोई होवै, अवर न करना जाई, बहुत सियानप लया न जाई, कर थाके सब चतुराई, गुर प्रसाद जन नानक देखिया, मैं हर बिन अवर ना कोई, हरे आपे पुरख निरंजन सोई, बड़ा हंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया, अज्ञान अंधेर बनासे, सतगुर सेव परम पद पाया, हर जपया सास ग्रासे, जिनको हर प्रभ कृपा सारी, ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई राम, हर नाम देवै, मेरा अंत सखाई राम, हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, जिथे पुस्त कलत्तर कोई बेली नाही, तिथे हर नाम छड़ाया, तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई, मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई, जिन्नी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया राम, तिन निफल जन्म सब बिरथा गवाया राम, निफल जन्म तिन बिरथा गवाया, ते साकत मोए मर चूरे, कर हुंदै रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे, हर हर तिनका

चन सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहे बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सात

अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुर जी मंगल गाया राम, हर गाए मंगल राम नामा, हर सेव सेवक सेवकी, प्रभ जाए पावे रंग महली, हर रंग माने रंग की, गुण राम गाए मन सुपहाय, हर गुरमति मन त्याया, जन नानक हर कृपा तारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया, राग बड़ा हंस मा

एहो तन मन दित्तड़ा वारो वार आराम। तन मन दित्ता पवजल जित्ता चूकी कान जमाणी। अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवन जानी। सो कर लत्ता सहज समता हर का नाम अधारा। कहो नानक।

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किस नाम बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वर घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरणे आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बया।

ने से परधाने हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा तिनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणे हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नाश भरम बनाश तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप वखाना नानक भ्रम पै गुण बिनासी मिल जल जलह।

मात पिता स्वाम सज्जन सब जगत बाल गोपाला जो सरण आवे गुण निदान पावे सो बहुड़ जन्म ना मरता बिनवंत नानक दास तेरा सब जी तेरे तू करता आठ पहर हर त्याये राम मन इच्छे अड़ा फल पाइये राम मन इच्छ पाइये प्रभ त्याये मिटह जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया भई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाइये बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याईये दरवाजे है अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊंचा गुण बेअंत किस कहन ना जाई कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहला घर पंजवा अलाहणिया

पूर्वकमाय धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंद लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देहा आगै सर पर जाण आगै सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गर्भ कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै का लीजै आगै हुक्म न चलै।

रेवा रुवे माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रुवे मैल न धोवे सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूले झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरे राखे नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी है।

प्रेम समाय, जिने अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता, कूड़ मुठी कूड़े आरे, सुने हो कंत मेहली हो, फिर सेवे हो शब्द विचारे, सब जागे आप।

प्यारी मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगणयारी मैं सदा रावे फिर अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मिल सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सबाया अपने गुर कौ तन मन दीजै ता मन भीजै कृष्णा दुख नवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगणयारे सचड़ै आप जगते अपाया गुर बिन घोर अंधारू

राम समाय हर गुण गाय मिल प्रीतम सुख पाए सदा आनंद रहै दिन राती विचो हो मैं जाय जिन्नी पुरखी हर नाम चित लाया दिन कै हौ लागू पाए काया कंचन ता थी जा सतगुर लए मिलाय सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाय बिन सतगुर भरम भलाणिया क्या मुह देसन आगे जाय क्या देन मुह जाय अवगुण पछताय दुखो दुख कमाय नाम रतिया से रंग चलूला फिर कै अंक समाय तिस जेवड़े अवरना सूजई किस आगे कही है जाय सो सच्चा सच सलाही है जे सतगुर दे बुझाय जिन्नी सचड़ा सच सलाहिया हौ तिन लागू पाए से जन सच्चे निर्मले तिन मिलिया मल सब जाय तिन मिलिया मल सब जाय सच्चै सर नहाए सच्चै सहज सुभाय नाम निरंजन अगम अगोचर सतगुर दिया बुझाय अन दिन भगत करहें रंग राते नानक सच समाए जिन्नी सचड़ा सच ते आया हों तिनकै लागू पाए वडहंस की वा

सब आखो सतगुरु वाहो वाहो जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवे है हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवे ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कार्ज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ है सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपूरै हर उपदेश।

काम क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट काम ना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

भूल ना हो गई, अचिंत वत्सै मन आय, अंतर तीर्थ ज्ञान है, सतगुर दिया बुझाय, मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृत सारे तीर्थ नहाए।

साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे। सतगुर दाता सेविय शब्द वसै मन आए, मन तन शीतल शांत होए। तृष्णा अग्न बुझाए, सुखा सिर सदा सुख होए। जा विचों आप गवाए, गुरमुख उदासी सो करे।

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिले है प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुरे अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। श्लोक महला तीजा रतना पारख जो होए सो रतना करे विचार। रतना सार ना जाने अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझे बूझन हार। मूर्ख आप गणाएंदे मर जम है होए खुआर। नानक रतना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार। कृपा करे जे अपनी ता हर रखा उरतार। महला तीजा।

साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम पौ भागे जेहा सतगुरु नो जाने तेहो होवै तां सच नाम लिव लागे नानक नाम मिलै वडियाई।

गुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायरत रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

सुहणे गुर का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजे भावें सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लख ना लखना जाई।

हर नाम सखाई मित्र हमारा, हर नावे नाल गल्ला, हर नावे नाल मसलत, हर नाम हमारी करदा नित सारा, हर नाम हमारी संगत अत प्यारी, हर नाम कुल हर नाम परवारा, जन नानक कहो हर नाम हर गुर दिया, हर हलत पलत सदा करे निस्तारा। सलोक महला तीजा, जिन कहो सतगुर भेटिया, ते हर कीर्त सदा कमाहे, चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया, सच्चै शब्द समाहे, कुल उधार है अपना, मोख पदवी आपे पाहे, पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया, जो गुर चरणी जन पाहे, जन नानक हर का दास है, कर कृपा हर लाज रखाए। महला तीजा, हम मैं अंदर खड़क है, खड़के खड़क विहाय, हम मैं वड्डा रोग है, मर जम्मे आवे जाए, जिनको पूर्व लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए, नानक गुर प्रसादी उभरे, हम मैं शब्द जलाए।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा। इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास। मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनास नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखियास पौड़ी। हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई। हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवै होर पहनन की हमारी सरद गई। हर नाम हमारा वणज

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरतै तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा। सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठै मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना।

कटियन ते भाई से वीर अगे गए ना मनियन मार कढ होवे पीर सोठ महला पहला कर पहला मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेस पाओ कर्म कर जमसी से कर भागट देख बाबा माया साथ ना होए इन माया जग मोहया विरला बूझे कोई रहाओ हाण हट कर आर जा सच नाम कर वथ सुरत सोच कर भांड साल तिस विच तिसनो रख वणजारिया स्यो वणज कर लै लाहा मन हस सुन सासत सौदागरी सत घोड़े लै चल खर्च बन चंगियाईया मत मन जान है कल निरंकार कै देस जाहे ता सुख लह महल लाए चित कर चाकरी।

कहो अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया किन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

इक्कत रूप फिरह परछन्न कोई न किस ही जेहा अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे कीते जनता एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना माहे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै सूठ महला पहला हों पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख परम रस राते ठाकुर शरण तुम्हारी करता तू मैं मान निमाने मान महत नाम धन पल्ले साचा शब्द समाने रहाओ तू पूरा हम पूरे होशे तू गौरा हम हौरे तुझ ही मन राते अहनस प्रभाते हर रसना जप मान रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे अहनस नाम रते से सूचे मर जन्मे से काचे अवर ना दीसै किस सालाही तिसह शरीक ना कोई प्रणवत नानक दासन दासा गुरमत जानिया सोई सोठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर ना तिस काल ना कर्मा जात अजात अजोनी संपहो ना तिस भाओ ना भरमा साचे सचियार विटोह कुरबान ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया साचा शब्द नीशान रहाओ ना तिस मात पिता सुत बंदप ना तिस काम ना नारी अकुल निरंजन अपर परंपर सगली जोत तुम्हारी घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया घट घट जोत सबाई वज्र कपाट मुक्ते गुरमति निरभय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जंता वसगत जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पाव है छूट है शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

ना पाईए, हर पाईए सतगुर पाए, सुख दुख दाता गुर मिले, कहो नानक सिफत समाए, तूर्थ महला पहला, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पे खारी जियो, मैं क्या मांगू किस थिर ना रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो, घट घट रव रहा बनवारी, जल थल महियल गुप्तो वरतै, गुर शब्दी देख निहारी जियो रहाओ, मरत पयाल आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा धारी जियो, सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, घट पीतर देख मरारी जियो, जन्म मरण को एहो जग बपड़ो,

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे है।

कियो, सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नावहो काही जियो। निर्मल नाम जपहो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साकह। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम वसार अन रस लोभानी, फिर पछताहे अभागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो हो घट घट जोत समोई जियो चल तो ठाक रखो हो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

प्रब पाया शब्दे हम मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धाम दा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर ना।

दाता इसका अंत ना पाया। पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया। मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया। हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा। हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा। नानक नाम रता एक रंगी शब्द सवारन हारा। सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी। जिचर काटे अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी। जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई। गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई। हर जियो तुद विटोह वारिया सदही तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार ज्वाले पाई। शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ। हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता। हर सिउ रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले। से कित आए संसारा हर रस ना पाया। बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा। बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी। मन मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेखे मार्ग लाए भाई। किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मिटे भाई। करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई। अवर ना दूजा कोई।

तेरै मन पाणी। तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी। मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंतकाल तेरा बेली होवे, सदा निभै तेरे नाल रहाव। दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावै, ना बूझै विचारी। निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हरनाक्ष नखह बिदारी। प्रहलाद जन सद हर गुण गावै, हर जियो लए उबारी। आपस कहो

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाए रहाऊ नामे ते सब उपजे पाई नाए विसरे मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदय रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

समावह हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे करे अंदर सच पाए सोठ महला तीजा बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे सतगुर दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ मनसा मार दुबदा सहज सुमाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिख काटन हारा शब्द मर हो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज सुन उपजे गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या नामे नाम समाए बिन सतगुर सब जग बोराना मनमुख अंधा शब्द ना जाने झूठे भरम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया भरम भुलाया हउमै बंधन कमाए जमन मरन सिर ऊपर उभो

प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा कर चोज वेखै पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहुमणिया

सतगुरु विच नाम निधान है प्यारा, कर दया अमृत मुख चोए रहाउ। आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब नारिजक समाह दा प्यारा।

प्यारा तुन आप बजाए आपे आपे जोगी पुरख है प्यारा आपे ही तप तापे आपे सतगुर आप है चेला उपदेश करे प्रभ आपे आपे नाउ जपाए दा प्यारा।

आपे कीमत पाएंदा प्यारा, आपे तुल परवान, आपे अतुल तुलाएंदा प्यारा, जन नानक सद कुर्बान। चौथ महला चौथा, आपे सेवा लाएंदा प्यारा, आपे भगत उमाहा।

कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावे बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावे सुख सहजे हरिया पाए सुपाई मनमुख भूखे दह दिस डोलह बिन नावे दुख पाई जन्म मरे फिर जोनी आवे दरगह मिले सुजाई कृपा करह ता हर गुण गावे हर रस अंतर पाई नानक दीन दयाल भये है कृष्णा शब्द बुझाई सोरठ महला चौथा पंच पदा अचार चरे ता सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटे आ जाई मेरे गोविंद अपने जन को दे वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई सब किश तेरा तू अंतर जामी। तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई। चौथ महला पंजवा घर पहला ते तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किस हौ जाती किस आराधी जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। निरभउ निरंकार भव खंडन सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा मानस बपड़ा क्या सलाई। क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर त्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख सहज समाणी।

जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुरु की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला, सब किस कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला, सोरठ महला पंजवा घर पहला, चौतुके गुरु गोविंद सलाहिय पाई, मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै पाई, एहा करनी सार। जित तन नाम ना उपजै पाई, से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई, जिन एकंकार आधार, सोई सच आराधना पाई, जिसते सब किश होए, गुरपुरे जानाया पाई, इस बिन अवर ना कोए, रहाव नाम मिहूने पच मोए पाई, गणत ना जाए गणी, बिन सच सोच ना पाईए पाई, साचा अगम धनी, आवन जान ना चुकई पाई, झूठी दुनी मणि, गुरमुख कोट उधारदा पाई, दे नावे एक कणी, सिमरत सात सोधिया पाई, बिन सत गुर भरम ना जाई, अनक कर्म कर थाकिया पाई, फिर बंधन पाई, चारे कुंडा सोधिया पाई, बिन सत गुर नाही जाई, वड भागी गुर पाया पाई, हर हर नाम त्याई, सच सदा है निर्मला पाई, निर्मल साची सोई, नदर करे जिस अपनी पाई, तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाईए पाई, बिरला कोई कोई, नानक रत्ता सच नाम पाई, सुन मन तन निर्मल होए, सोठ महला पंजवा दो तुके, जौ लो भाओ अपाओ इहु मानै, तौ लो मिलन दुराई, आन अपना।

आस पुजाई दास अपने कौ तू विसरह नाही चरण धूर मन भाई तेरी अकथ कथा कथन ना जाई गुण निधान सुख दाते स्वामी सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई सेवक को तुम सेवा दीनी।

अज्ञाना प्रगट भय सब ठाई सोई ज्ञानी सोई त्यानी सोई पुरख सुपहाई कहो नानक जिस भय दयाला ता को मन ते बिसर ना जाई सोट महला पंजवा सगल समग्री मोह।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिए एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा कोट बिघन लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा प्रभ बाणी शब्द सुभाख्या गावहो सुनहो पढ़हो नित पाई गुरपूरै तू राख्या रहाउ साचा साहिब अमित वडाई भगत वच्छल दयाला संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला हरे अमृत नाम भोजन नित पुंचो हो सर्ब वेला मुख पावो हो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोबिंद नित गावो हो।

जोगे अंतर गुर नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवां घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

सब तन अर्पीजै इयों दर्शन हर जियो पाईऐ भयो अनग्रहो प्रसाद संतन कै हर नामा है मीठा जन नानक कौ गुर कृपा तारी सब अकुल निरंजन दीठा सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जिया का दातारे प्रतपालै नित सार संभालै एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम परियो रामदास रहाउ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्ब कटां पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हर बेअंत हों मित कर वरनो क्या जाना होए कैसो रे करो बेनती सतगुरे अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराती तरियारे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना परियारी सोठ महला पंजवां जिन्ना बात को बहुत अंदेसरू ते मिटे सब गया सहज सैन अर सुखमन नारी ऊंद कमल बिगसया देखो अचरज भया जेहे ठाकुर को सुनत अगाध बोध सो हृदय गुर दया रहाउ जोए दूत मोहे बहुत संतावत ते भयानक भया करह बेनती राख ठाकुर ते हम तेरी सरनया जह भंडार गोविंद का खुलिया जेहे प्राप्त ते लया एक रतन मोह को गुर दीना मेरा मन तन शीतल थिया एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर नाम हुआ भगत भंडार गुर नानक कौ सौंपे फिर लेखा मूल ना लया सोठ महला पंजवा चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त अघाई गुण अमोल जिस हृदय ना वस्या ते नर तृष्ण त्रिखाई हर अरादे अरोग अनदाई जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ जेह जन ओट गई प्रभ तेरी से सुखिये प्रभ सरने जेह नर विसरिया पुरख बधाता ते दुखिया मह गणने जेह गुरमान प्रभु निवलाई ते महा आनंद रस करिया जेह प्रभु बिसार गुर ते बेमुखाई ते नरक घोर मह परिया जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय भये मगन चरनारा सोठ महला पंजवा राजन मह राजा उरझायो मानन मह अभमानी लोभन मह लोभी लोभायो त्यों हर रंग रचे ज्ञानी हर जन को इही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुर हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाउ अमलन स्यों अमली लपटायो भूमन भूम प्यारी हीर संग बारक है लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मह विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पाव है जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गाव है जैसी भूख तैसी का पूर्ण सगल कटां का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोठ महला पंजवा हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूरख

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

बन आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाउ संतन स्यो मेरी लेवा देवी संतन स्यो बेवहारा संतन स्यो हमलाहा खाटिया हर भगत परे।

अब कहाँ करे तू, जो फाट्यो सगलो लेखा, महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर स्यों मन मानिया, रंग रत्ते बिस्मादी।

सुख नहीं पाइए। हो रेन तू सगल की मेरे मन, तव आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना भाने अंतर बिद जाने, ता की कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा। गोविंद दामोदर दयाल माधवी पा

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहां सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भये हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिन सह काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरद।

आवहो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया तां की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभदाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत आराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घरे आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाते दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोरठ महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायउ सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावे बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन सीतल अग्न ना अंतर तुकी

गुरपूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरत महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाईऐ, बिरथी काल न जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण होवै काला रहाउ, सार समालै नित प्रत पालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै। सूरठ महला पंजवा, अबनासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कहो बर्तन, बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी सरन पया सुख पाईऐ, बहुड़ दुख ना होई रहाओ, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिनकी धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई। सूरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहारै।

औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा रहाउ। सम्राट पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर आप उभारिया। नानक नाम अधारा, चौथ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी। तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लहो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौरठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो।

अनंत अनंतर जत कत पेखों सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वड़े अवन ना कोई टूठ महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राखन हारे राखियो बारिक

रत्न जास गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगा घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत पए अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई।

पाप रोग गए गुरबचनी, मन पिछे फल पाया, मेरा गुर पूरा सुखदाता, करण कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, नंद बिनोद मंगल गुण गावहु, गुर नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग पीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

लाथे तोठ महला पंजवा गुरपूरै किरपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी कर इशनान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरी उठत बैठत हर हर त्याई अन दिन सो कृत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड भागी पा।

अंत सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी विघ्न बनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दिरड़ाया होए पाप पय सब पावन जन नानक सुख घर आया सोरठ महला पंजवा साहेब गुणी गहेरा घर लश्कर सब तेरा रखवाले गुरु गोपाला सब जी पय दयाला जाप

नावै अपना नाम आपे दिया प्रभ करन हार रख लिया हर दर्शन प्राण आधारा एहो पूर्ण बिमल बिचारा कर कृपा अंतर जामी दास नानक सरन स्वामी सूरठ महला पंजवां गुरपुरै चरणी लाया हर

प्रभराव रहे आपर पूरी हेम कुशल पया इस नाना पार ब्रह्म वित्तो कुरबाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुर पूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

चारू सर्व गुणा सुखदायो मंदर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हाँ हाँ पीत भयो है बीचो सुनत।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब बेद जाने ता किस पह आख सुनाई है कहने कथन ना पीजे गोविंद हर पावे पैजर खाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है।

हर हर नाम अवखद मुख पाया गन नानक सुख बसंती चौरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ भये आनंदा दुख कलेश सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप पौ जल पार उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब कि

आप प्रभु स्वामी पात मत की नी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी वांछो संता तूड़ी सोठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारी प्रभ सबे काज सवारी हरे अपनी कृपा तारी प्रभ पूरन पैज सवारी अपने दास को पयो सहाई सगल मन

प्रभु की अकथ कहानी जन बोले अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोरठ महला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछै कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडे आई।

मिल साध संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाऊ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

का दाता शुभ चितवन दास तुम्हारी राख पैज दास अपने की कारज आप सवारी रहाओ मेरा प्रभ पर उपकारी पूर्ण कल दिन तारी।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाई है कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर राव।

सोई संत गुण गावे प्रेम भगत ताका मन लीना पार ब्रह्म मन पावे आठ पहर हर का जस रवना।

जो सिवरै किसकी गत हुवै उधर है सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म नदरी आया सोठ महला पंजवा गुरपूरै पूरी कीनी बख्शे अपनी कर दीनी नित आनंद सुख पाया थाम सगले सुखी वसाया हर की भगत।

ਲੱਗਾ ਵਹਿ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ।

सुख पाया। संत अस्थान बसे सुख सहजी, सगले दुख मिटाया। रहाउ गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्म मन पाणी। नानक दास वखाणी, निर्मल अकथ कहानी। चौथ महला पंजवां, भूखे खावत लाज ना आवै। त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाइयै। जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल, सदा सदा सुख पाइय। रहाउ ज्यों कामी काम लुभावै।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संस्था।

सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रो

दर्शन पेट होते आनंदा, दुख गया हर गाइय, हर रस पीवो हो पाई, नाम जप हो नामो अराध हो, गुरपुरे की सरनाई रहा, तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूरन पाई।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंदेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यो परयो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

पूरन सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जो गहारियो।

तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस फिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज

धरी ता को जस उरतारु रहाउ अटल पयो त्रू जा कह सिमरन हर निरपय पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे रहाओ। कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करे, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कबहु।

पूत संबंधी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नरको संग शाड सब भागे कहो कहा या मन बौरे को इनस्यों ने हो लगायो दीना नाथ सकल पै पंजन जसता को बिसरायो स्वान पूछ यो भयो ना सूदो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

कै तू ठह लागे जन्मे अकारत थोयो कर पर पंच उदर निज पोखयो पश की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औध सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो।

तेहे घट ब्रह्म ने वासा गुर कृपा जेहे नर को कीनी तेहे एहे जुगत पछानी नानक ली।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूझी तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी

मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वडियाई अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम ना पाई सुन संवाद महा परमार तीन पवन पत नाम मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहाम कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ाम मन मुख झूठ लह पैमान आपे ज्ञान अगाम जिन चाखिया से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथ का क्या कथिय भाई चालो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक भरम भला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे कछ होए अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुरु।

पुरतार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण गातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाउ बिख माया चित मोहया भाई चतराई पथ खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिए भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर घर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनहु गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाइए भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूढ़ है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाए बिरह बेदी सच वसी भाई अदक रही हर नाय सब को आख अपना भाई गुरते बुझै सुजान जो बीते से उबरे भाई शब्द सच्चा निशान ईंदन अदक सकेली भाई पाव करन चक पाई हिन पल नाम हृदय बसै भाई नानक।

राम नाम मन वसिया नामे ही मुक्त पाई रिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी गुर कै सहज सुपाई मन मुखा नो प्रतीत ना आवी अंतर लोभ सुवाओ गुरमुख हिरदय शब्द ना भेदियो हर नाम न लागा पाओ कूड़ कपट पाज लह जासी मन मुख फीका हलाओ भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी

तनहारा नानक तिन कै सद बलिहार जिन हर राख्या पुरतारा सोरठ महला तीजा दो तुकी नगुणिया नु आपे बख्श ले पाई सतगुर की सेवा लाए सतगुर की सेवा उत्तम है पाई राम नाम चित लाए हर जियो आपे बख्श मलाए गुणहीन हम अपराधी पाई पूरे सतगुर लए रलाए रहाओ कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारी साचे शब्द विचार भौजल पार उतारियन पाई सतगुर बेड़ै चाड़ मनूरै ते कंचन पए पाई गुर पारस मेल मलाई आप छोड़ नाऊ मन वसिया पाई ज्योति ज्योत मलाई हौवारी हौवार ने पाई सतगुरु कहो सद बलिहार जाओ नाम निदान जिन दिता पाई गुरमत सहज समाव गुरबिन सहज ना उपजै पाई पूछ हो ज्ञानिया जाए सतगुर की सेवा सदा कर पाई विचो आप गवाई गुरमति पौ उपजै पाई पौ करनी सच सार प्रेम पदार्थ पाई पाई सच नाम आधार जो सतगुर सेव है अपना पाई तिनकै हो लागो पाए जन्म सवारी अपना पाई कुल भी लई बख्शाए सच बाणी सच शब्द है पाई गुर कृपा ते होए नानक नाम हर मन वसै पाई तिस बिघन न लागै कोय सोरठ महला तीजा हर जियो शब्दे जापदा पाई पूरे भाग मलाई सदा सुख सुहागणी पाई अन दिन रतिया रंग लाई हर जी तू आपे रंग चढ़ाई गावो रंग राते हो पाई हर सेती रंग लाई रहाओ गुर की कार कमावणी पाई आप छोड़ चित लाए सदा सहज फिर दुख ना लगई पाई हरे आप बसै मन आए फिर का हुक्म ना जानी पाई सा कुलखणी कुनार मन हट कार कमावणी पाई विणना वह कूड़ियार से गावे जिन मस्तक भाग है पाई पाए सच्चा बैराग अन दिन राते गुण रवह पाई निरपहो गुर लिवलाग सबना मार जीवाल दा पाई सो सेव हो दिन रात सो क्यों मनो वसारी है पाई जिस दी

भाई नौ निद भरे भंडार तिसकी कीमत ना पवे भाई ऊंचा अग में अपार जी जंत प्रित पाल दा भाई नित नित कर दा सार सतगुर पूरा पीटिए भाई शब्द मलावण हार सच्चे चरण सरेवी है भाई ब्रह्म पौ हो नास मिल संत सभा मन मांझी है भाई हर कै नाम निवास मिटै अंधेरा अज्ञानता भाई कमल हो प्रगास गुर बचनी सुख उपजै भाई सब फल सतगुर पास मेरा तेरा छोड़िए भाई होइए सब की तूर घट घट ब्रह्म पसारिया भाई पेखै सुने हजूर जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई इत दिन मरिए चूर करन करावन समर्थो भाई सर्व कला भरपूर प्रेम पदार्थ नाम है भाई माया मोह विनाश तिस पावै ता मेल लय भाई हिरदय नाम निवास गुरमुख कमल परगासी है भाई हृदय होए परगास प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई मौलिया तरत आकाश गुरपूरै संतोखिया भाई एनस लागा पाओ रसना राम रवै सदा भाई साचा साध सुआओ करनी सुन सुन जीविया भाई निश्चल पाया थाओ जिस प्रतीत ना आवे भाई सो जियड़ा जल जाओ बहु गुण मेरे साहिब है भाई हाँ तिसके बल जाओ ओ निर्गुण आरे पाल दा भाई देन थावे थाओ रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाम जिस गुर साचा भेटिए भाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन घड़ी ना जीविए भाई सर्व कला भरपूर सास ग्रास ना विसरै भाई पेखो सदा हजूर साधु संग मिलाया भाई सर्व रहया भरपूर जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटन हार चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी माया मोह वधाया जिसनों कीतो कर्म आप प्यारी।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन।

करम मणि सब सच महला चौथा सूरख ताम स्वामणि जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमति हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लबई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए एहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर से।

हरि अपना सो जन होवे परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखिए जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है। सत संगत साधु लग

ना वे सही चुक गया वे सास नानक गुरमुखा नो सुख अगला जिन्ना अंतर नाम निवास महला तीजा से सहन से सजना जे गुरमुख मिल है सुपाई सतगुर का पाना अन दिन कर है से सच रहे समाई दूजे पाए लगे सजन ना आखिए जे अभिमान कर है वेकार मन मुख आप स्वार्थी कार्ज ना सकह सवार नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई ना मेटनहार पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै आप खेल रचाया त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया विच हों मैं लेखा मंगी है फिर आवे जाया जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा कुमाया।

जग कमला फिरे गुरमुख नगरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रमदा परम पलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खवाया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

वीरता जन्म गवाया। अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सोहर पुरख अगम है कहो कित बिद पाइये। तिस रूप नारेख अदृष्ट कहो जन क्यों ते आइये। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये। जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये। गुरपूरे वेखा लिया गुर सेवा पाइये। श्लोक महला तीजा ज्यों तन कोलू पीड़िए। रतना पूरी दे जियो वंजे चौखनिए। सच्चे संदड़े ने नानक मेल ना चुकई।

हरे आपे सेठ सवार सिर तंदै लाए दा इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाए दा सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हऊ मैं विचों जाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रहे समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसै मन आए नानक जो गुर सेव है अपना हों तिन बलिहार जाऊ महला तीजा मनमुख मन अजित है दूजे लगे जाय तिसनु सुख सुपने नहीं दुखे दुख व्याय कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एहो मन वस न आवे थके कर्म कमाए भेख धारी भेख कर थके अखट तीरथ नहाए।

आए नानक नगरी बख्शले शब्दे मेल मलाए महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाव ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दोह चारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया ते दरगाह पैंदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया सलोक महला तीजा थाले विच तै वस्तु पयो हर भोजन अमृत सार जित खादै मन तृप्ती है पाईऐ मोख द्वार इहो भोजन अलब है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी भाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल महला तीजा जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को

नाम है सब परम दे नित जग तोता सह सार मन मुख कर्म कमावनी हम मैं अंध गुबार गुरमुखे अमृत पीवना नानक शब्द विचार महला तीजा सहजे जागे सहजे सोए गुरमुखे आनंद ने उस्तत होए मन मुख पर मैं सहसा होए अंतर चिंता नींद ना सोए ज्ञानी जाग है सवह सुपाए नानक नाम रत्या बल जाओ पौड़ी से हर नाम त्याव है जो हर रत्या हर एक त्याव है एक इको हर सत्या हर इको वरत एक इको उत्पत्या जो हर नाम त्याव है तिन दर सठ कत्या गुरमति देव आप गुरमुख हर जपया सलोक महला तीजा अंतर ज्ञान ना आय जित किस सोजी पाय ऋण जिठा क्या सलाही है अंधा अंध कमाय नानक शब्द पछाणी है।

हट सच रतनी भरे भंडार गुर कृपा ते पायन जे देवै देवन हार सच्चा सौदा लाभ सदा खटिया नाम अपार विख विच अमृत प्रगटिया कर्म पिया मनहार नानक सच सलाही है धन सवारन हार पौड़ी जिन्ना अंदर कूड़ वरतै सच ना पावई जे को बोले सच कूड़ा जल जावई कूड़ियारी रजै कूड़ जो विष्टा काग खावे जिस हर होए कृपाल सो नाम त्यावे हर गुरमुख नाम अराध कूड़ पाप

आई। नानक गुरमुख मिला बड़े आईया, जे आपे मेल मिलाए पौड़ी। हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी, जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी। जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी, गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी। जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी। सलोक महला तीजा, हस्ती सिर ज्यों अंकस है अहरण ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे, यों गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काली। नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान। नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु मेलाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया। गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया। गुर सतगुरु

सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाईए पूरे कर्म पाया जाए। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोलह हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है

पिच्छा सुख नहीं मर जम्मह वारु वार तृष्णा कदे ना बुझई दुबदा हो एक वार मुह काले तिना निंदका तित सच्चा दरबार नानक नाम विहूनिया ना उरवार ना पार पौड़ी जो हर नाम ते आएंगे से हर हर नाम रते मन माही जिन्ना मन चेते एक अरादया तिना एक सबिन दूजा को नाही से पुरख हर सेम दे जिन तुर मस्तक लेख लखाही हर के गुण नित गाम दे हर गुण गाए गुणी समझाही वड्याई वड्डी गुरमुखा गुरपूरै हर नाम समाही सलोक महला तीजा सतगुर की सेवा गाखड़ी सिर तीजै आप गवाए शब्द मरह फिर ना मरह ता सेवा पवै सब थाए पारस परसै पारस हुवै सच रह लिवलाए जिस पूरब होवै लिखिया किस सतगुर मिले।

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरै

हर सेती मन राव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हों बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे सिंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुत साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादिया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यो प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यो नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ सब जग मह वरसै मेह। जो हर दासन की उस्तत है सा हर की वडियाई। हर अपनी वडियाई भाम दी जन का जयकार कराई। सो हर जन नाम त्याईंदा हर हर जन एक समान। जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई। पौड़ी रहन दिन सप्रभात तू है ही गावना। जी जंत सरबत नाउ तेरा त्यावना।

जाहि। नानक बख्श लए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे। पौड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया सेब चखण जंत। जिन्नी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया। संत जना की धूर मस्तक लाया, नानक पए पुनीत हर तीर्थ नाया। स्लोक

नाम उपजे किसना भुख सब जाय नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए महला चौथा सतगुरु पुरख जे मारिया प्रम प्रमया कर छोड़ गया उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आ गै भया उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ क्या होए किसे ही दह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा कोई पावे एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे अगों दे जन नानक आख सुनावे पौड़ी गुर सच्चे बद्दा थे हो रखवाले गुर दित्ते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते सलोक महला पहला ताकी रजाए लिखिया पाए अब क्या की जय पांडे।

तेन निज कर वास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करण कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रभ, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भूतपूर्व

संसार अंध गहेरा चौ दिस पसरियो है जम जेवरा रहाउ कबत पड़े पड़ कबता मुए कपड़ किदा रह जाई जटा तार तार जोगी मुए तेरी गत इन्ह ना पाई दर्ब संच संच राजे मुए गडले कंचन भारी बेल पड़े पड़ पंडित मुए।

परत है, या तन की यह बड़ाई, काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया। जब दस मास उर्ध मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया रहा। ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर धन किया। मरती बार लेहो लेहो करिए, भूत रहन क्यों दिया। देहरी लो बरी नार संग पई, आगे सजन सोहेला। मरखट लो सब लोग कटंब भयो,

झूठी माया आप बंधाया, ज्यो नरनी भ्रम सूआ। वेद पुराण सब मत सुन के करी कर्म की आसा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निरासा। मन रे सरयो ना एक काजा, भजियो ना रघुपति।

जाई हमरा धर्म गया पौ भागा जब राम नाम चित लागा रहाऊ बाजीगर डंक बजाई सब

जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रहे आसमाई, गुर किंचत कृपा कीनी,

तुम राम न कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाउ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तुम कर कर मैया।

सो पंच सैल सुख माने, कबीर है सो धन पाया, हर भेदत आप मिटाया, क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले हो सोई, हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोच है बारंबारा, रहाओ अंधियारे दीपक चाहिए, एक बस्ते अगोचर लही है, बस्ते अगोचर पाई, घट दीपक रहे आसमाई, कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजे, ना पतीजे तो क्या कीजे, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बलो वस पानी, काया मांजस कौन गुना, जो घट पीतर है मलना, रहाओ लौकी अठ सठ तीरथ नाही,

मन पवन सुख बनिया, किस जोग प्राप्त गनिया, रहाउ गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेत्याउ भा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया।

अनहद शब्द भजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह दीप।

नाही। अनल अगम जैसे लहर में उदद जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूतन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचार्यो राजा राम को रस जेह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन।

किस पाई पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना जाम द्वार जा पकड़ चलाया।

राखै जा सोए, जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाही जाय, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चलना।

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिउ चित लागे फिर का न खाए, रहाउ सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिखे

जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मालक होवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला करती जा।

अष्ट साज साज प्राण शुद्ध है करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास। तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंद बिन सहस तव गंद हिव चलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसके चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जो तिस पावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोगत मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं को होए जाते तेरे नाम वासा। तनासरी महला तीजा कर दूजा चौपदे।

आए पूरे गुर की साखी बाणी सुख माने अंतर सहज समाणी एक अचरज जन देखो पाई दुबदा मार हर मन वसाई नाम अमोलक ना पाया जाए गुर प्रसाद वसै मन आए सब मह वसै प्रभ एको सोए गुरमति घट प्रगट होए सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया नानक नाम मिलै मन मानिया तनासरी महला तीजा हर नाम तन निर्मल अत अपारा गुर कै शब्द भरे भंडारा नाम तन बिन होर सब बिख जान माया मोहे जलै अभमान गुरमुख हर रस चाखै कोई।

मैं मलत होए साची भगत सदा सुख होए। जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग किस सदा हरख ना।

निर्मल होए, अंतर नाम बसह पात उत्तम होए रहाओ। गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई। भगत करे जन वडियाई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

मूड़ को सात तृष्णा यज्ञ बुझाई, अंतर शांत सहज सुख पाए, गुर के भाणे चले ता आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझे ना जाने बाणी,

गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैगल मिकदारा, गुर अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवार।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काक्या तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काक्या तन हुनिया वै जाए रहाव मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरे भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जोग मह अमृत।

लाए। गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार। हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए। रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे। गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लहे मलाए। भिख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान। आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत सालाही सच सोई। आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए। जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। रागत नासरी महला तीजा, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हम भीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हम बलिहार है।

किरपन को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उड़तारी हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाध बोध अपरंपर पुरख अपारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पैज सुवारी तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जप्यो तिनका दुख परम पौ भागी अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी हर कै नाम रत्ता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर

निक कीरे तुम वड पुरख वडागी तुम्हारे गत में तो कह ना सकह प्रभ हम क्यों कर मिल है अभागी हर प्रभ स्वामी कृपा धारो हम हर हर सेवा लागी नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बाणी जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सद कुरबानी हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमख पल सब के लिख पाप लह जानी रहा ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी तिन की तूर मंग है प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपे हो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सब लाथी भूख भुखानी जिनके वड्डे भाग वाडी विचे तिन हर जपे हो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी तनासरी महल।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज बडानी। जन नानक आप मलाए, सोई हर मिलसी। अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनासरी महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वास है काम तेना, सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े। ता सर्व सुख पावे मेरे मना, जप मन सत नाम सदा सत नाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जह हर सिमरन पया, तह अपाद गत कीनी। वड भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर पवजल करना।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लकी तेरी कुदरत कौन बिचारी जल थल महियल रविया सरब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरी तू अबनासी पुरख मरारी ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी महला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

मन गायो भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त वस।

जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जाको दया करी मेरे ठाकुर, इन गुरह कमानो मंता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला। ओत पोत नानक संग रविया, ज्यों माता बाल गोपाला। तुनासरी।

ताकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारो बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धभ भस्म संगीत अमृत संग ना

केले वेख दुख भागे गुरु ज्ञान अंजन ने तर दीत साध संग इन दुख ते निकसेओ नानक एक परीत तनासरी महला पंजवां पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे।

आनंद राज पाई मुक्ति निमुख बुलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब बुझी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वासे अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गा।

ऐसी ठगौरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुरे अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर ले आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो हम बारक तुम्हारे तारे।

समझावहु हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तना

आप भ्रमण बसदा कर उर्द ताप लै गैन एह बिदन पतिया नू ठाकुर जोग जुगत कर जैन अमृत नाम निर्मोल कहार जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महल।

टेके मन विश्वास प्रभ तारिया चरण रीन बांछे नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवा मेरा लागो राम सिंह हेत सतगुर मेरा सदा सहाय जिन दुख का काटिया केत रहाओ हाथ दे राखियो अपना कर बिरता सगल मिटाई निंदक के मुख काले कीने जन का आप सहाई।

आन संयम किस ना सूजै ए जतन काट कल काल रहाओ आद अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोय जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोय वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करह विचार मुक्त पाई है साध संगत बिन सजाए।

रहाउ। स्वर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल व्यापे माए, जी उदारन सब कुल तारन, हर हर नाम त्याय। नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना, कर कृपा जिस दे स्वामी, बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा, कर दूजा चौपदे

रहाउ साध की शोभायत मचकीनी संत वडाई हर जस कीनी आनंद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवै एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

जा की रास मिल साध संगत होवत परगास जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिटह।

अंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाउ पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किने ना दुत्तर पाखे

अराद हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन खापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रब देख कश संग नाही चलना जा को रे कर्म भला तिने ओट गही संत पला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक है निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल क्लेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख दिन सरहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास समारे एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले।

हाव निरतन कौ तन अंदले कौ टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का

कर आई, संत अनुग्रह पए मन निर्मल, नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा।

ही धनासरी महला पंजवा जतन करै मनुख डहकावै ओ अंतर जामी जानै पाप

जिस जन कह पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत भय दर्श पेखे, मातै परों रवाल, रस रस गुण गाव।

सरल रूप तुमरे वचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्ब सुख भोग रस देवै।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवा मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महा जंजाला।

बुद्ध पाई, दया मया कृपा ठाकुर की, से ही संत सुपाई, तिनकै संग नानक निस्तरिय, जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां, गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी, अंधियारे मह दीप रहाउ, सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम।

प्यारस मह मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन छोर जय श्री महला पंजवां चात्रक चितवत बरसत में किरपा सिंध करुणा प्रभ धारहु हर प्रिय।

आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंधकूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहा ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जैत श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जैत श्री महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग ते तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

लाड़दास जन अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महा।

दह दिस को उठताया घट ही भीतर बसै निरंजन ताको मर्म ना पाया ना हिन गुण ना हिन कश जप तप कौन कर्म अब कीजै नानक हार परयो सरनागत अपै दान प्रभ दीजै जैत सच।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बजंतिया यार वे प्रिय हबे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ के सचते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेर आपन पाना किस निशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लाल

ठाकुर हो किद्दी गुण अवगुण ना पछाणी, गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई, जिस संग पता।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है।

सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गनी पाज सरन स्वा

दे मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक परम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

मध्य पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़ साच, पूर रहे हो सर्वतर मैं, नानक हर रंग राच पौड़ी, हर एक निरंजन गाई है।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर भगत भाव

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, विसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच पुजाई। वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे।

कहिए है तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्त।

लाग संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को।

कै नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताकू धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाऊ बिन सिमरन जो जीवन बलना।

प्रभु को किस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर नीत। तैसी बुद्ध करहो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्तै आन न कतहु तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अवर

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न सूझ।

भूख पलायन रहाव, जो मांगह सोई सोई पावह, सेव हर के चरण रसायन, जन्म मरण दोहू ते छूटह, पवजल जगत तरायन, खोजत खो

था थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देख लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आरादे।

तहंता औखद हर को नाव रहाऊ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास

दुख पंजन जाका बड परताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारी टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी

सब किस किस के ग्रह में आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीहु ना होए रहाव, हौं टुनेंदी दर्शन कारण, बीती बीती पेखा, गुरमिल भरम गवाया ही, एहे बुद्ध पाई मैं साधु कन्हो, लेख लिखियो तुर माथे, एहे बिद नानक हर नैन अलोई, टोडी महला पंजवां।

रे महाराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ो निह भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा घर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ बंधन तोर छोर बिखियाते

मोहे हर रंग भीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक

धर्म जप एही राम नाम निर्मल है रीत रहाऊ प्राण आधार जीवन धन मोरै देखन को दर्शन प्रभ नीत बाट घाट तोसा संग मोरै मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद भये मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमख ही अरे ते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खूब हो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुगड़ सुजान कोट राज नाम धन मेरे अमृत दृष्ट धारुह प्रभ मान आठ पहर रसना गुण गावे जस पूर अगावे समय।

सदा हजूर जो तुमरा जस गावह करते से गन कभो ना मरते चूर धंध बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

दर्शन देखन को तारी माने आस रहाओ। सिमरौ नाम निरंजन करते मन तन ते सब किन विखनास। पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तास। शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवां हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता। अंतर जामी मन को पावन रहाओ। सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन। विस्मन विस्म

कोट फला दर्शन गुर दीठे रहाओ। गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे। अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे। बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे। नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे। टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा। सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ। गुरपुरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा। कर गह काढ लियो जाने अपना, बिख सागर संसारा। जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा। नानक शरण गए।

दुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया, ठाकुर अगमय अपारी, जो जन पार ब्रह्म अपने कीने, तिनका बहुर कछ ना बिचारे, नाम रतन सुन जप जप जीवा, हर नानक कंठ मजारी, टूडी महला नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कहो कहां अपनी अदम्भाई।

नहीं कब हूँ, होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ इस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपैत स देवो जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेठे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो

हरि आपी पंच तत् विस्थारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुर मिले आपी हरि आपी झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोटक तंत्र के पाप सब खोवे हर भवजल पार उतारा रहाऊ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निर्भउ निर्वैर निरंकारा हर निकट बसत कस नदर ना आवे हर लादा गुर विचारा हर आपे साहु सराफ रतन हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मान हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर त्याय सुखदाता जाका अंत न पारा वारा रहाऊ अगन कुंट मह उर्द लिव लागा हर राख उदर मंजारा सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन हर अंत शडावन हारा जाके हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जल पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईच नी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

कर कासा दर्शन की भूख, मैं दर मांगो नीता नीत, तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए, रहाऊ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना, चंदन भगता जोत अनेही, सर्बे परमल करना, के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई, तेरे नाम निवे रहे लिव लाए, नानक तिन दर पीछिया पाए, पलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इहो तन माया पाहया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

तू है तू होनहार, अगम अगाध ऊंच अपार, जो तुद सेव है तिन पहो दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाही, जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप, सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए, जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार, कहो नानक प्रभ लोचा पूर संत।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

खातियां मुख बीड़ियां लाइया हर हर कदे ना चेतेओ जम पकड़ चलाइया जिन हर नामा हर चेतिया हिरदय उर तारे तिन जम नेड़ ना आवी गुर सिख गुर प्यारे।

ए भजन ते निर्भय पद पावे तलंग महला नौवां जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जां स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौ तुम जानो नानक हर गुण गाए लै सब सुफन समानो।

आऊ संपत रथ धन राज सिउ अतने हो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेता सुई महला पहला जप तप का बंद भेड़ला।

नदरी कर्म होए सूही महला पहला भांडा हच्छा सोए जो तिस भाव सी भांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यो जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए।

भोगवै भोगी होवै खाए तपिया होवै तप करी तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगै कुछ न होवै जे सण निशान जाए तैसो जैसा कांडियै जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए एहो तन वेची बै करी जे को लए विकाए नानक कम ना आवई।

जोग ना देश दसंतर भवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गाव हो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ, सत संगति उत्तम सत गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा धार मेलो सत संगत, हम तो वह पग जन के, राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के, हमरी जात पात गुर सतगुर, हम बेचो सिर गुर के, जन नानक नाम परयो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के, सुई महला चौथा, हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिन से दालद दलगा, पहु जन्म मरना मेट्यो गुर शब्दी, हर अस्तर सेव सुख समगा, मेरे मन पज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अर्प धरियो गुर आगे, सिर वेच लियो मुल महगा रहाउ, नरपत राजे रंग रस माण है, बिन नावे पकड़ खड़े सब कलगा, धर्म राय सिर डंड लगाना, फिर पछताने हाथ फलगा, हर राख राख जन किरमत मारी, सरनागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत देहो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा, तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विट्टो सद घूमगा।

हर हर करह नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हम हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करी मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाणी रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जेसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तौ कत अनत साध लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौमै करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसकै हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

मीट दे। उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए है तेहा हों करी बखियान। सूही महला चौथा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तेरे कमन कमन।

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जप भ्रम पौ दूर कीजै हर की वडियाई देखो संतो हर निमाणिया मान दिवाए ज्यों धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यों नानक साध जना जगत्यान सब पैरी पाए सूही महला चौथा तू करता सब किसे आपे जान है क्या तुद पह आख सुनाई है बुरा भला तुद सब किस सूझै जेहा को करे तेहा को पाई मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है बुरा भला तुद सब किस सूझै तुद भावै तिवें बलावै रहाओ सब मोह माया शरीर हर किया विच देही मनुख भगत कराई इक ना सतगुर मेल सुख देवह इक मनमुख धंद पिटाई सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तुद सबना सिर लिखिया लेख जेही तू नदर करह तेहा को हुवै बिन नदरी नाही को भेख तेरी वडियाई तू है जान है सब तुदनो नित त्याई

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रूप गवाई ते मुक्त भये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर तिनके हम मैं रोग गए रहाउ ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी विच हम मैं कार कमाई जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी हर गुरमुख सूजी पाई हम मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिनको जन्म मरण दुख पारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हों बलिहारी जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू

जो हर पावे त्यों रखी है, मेरे हर जियो सब को तेरे वस। असा जोर नाही जे किस कर हम साक है।

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता होवै। इकना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मनमुख करह से रोवै। हर की वडिआई।

मैं मालत हुई कहो नानक मेरी परम गत हुई सूही महला पंजवां कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाऊ जल थल महियल रहया परपूर।

आवे सास भागणी अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रहण बिहावे कर्महीन।

ला पंजवा गृहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस प्यासी फिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जां फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिजाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया सब ते ऊंचा मंदर मेरा सब

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरयो देखो प्रिय जाई सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई किन बेदही अरो तीरै निमानो मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी धन कंता।

पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले जागी, हिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

करन सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंधे रहाओ, कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाईऐ जो

आई जा कहो बिन सतबार ना काई इव सुपना सोवत नहीं जाने अचेत व्यवस्था मह लपटान रहाउ महा मोहे मोहयो गावारा पेखत पेखत ऊठ सधारा ऊच ते ऊच ताका दरबारा कई जंत बनाहे अपारा दूसर

साजन सुत बंधप भाई, जत कत पेखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवां, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बलोद मंगल।

पंजवा बैकुंठ नगर जहां संत वासा प्रभु चरण कमल रे दमाहे निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाऊ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के परहरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

राम आहार पूदाता प्रभ देवनहार राम रमत संतन सुख माना नानक देवनहार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

आस हर सेती राते राम रसायणे अन दिन माते बाहां पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवां संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

माला, जियो पिंड सब तुमरा माला, अमृत नाम चले जप नाला, नानक जाचे संतर वाला, सूही महला पंजवा, किस बिन दूजा।

नाही को सुखी ताके पाछे जाऊं छोड़ जाहे जो सगल कौ फिर लपटाऊं करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

आया, पुरुष है आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरह पठाया रहाऊ महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया गृह अंध कुपाया, पावक सगराया गही ओट सधाया, नानक हर त्याया।

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई जिसनो हो ही दयाला।

जित तुद ते आई निर्मल हुवै देहा मेरे राम हौ सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साद संग तिन सरनाई पाया रहाउ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारी एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते महादेव अवतूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके बेपूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ध्याया।

करते का निमक सिमरत जित छूटै संतो सागर पार उतरी है। जे को बचन कमावै संतन का सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ। कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चौहों वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल मही अल सोई रहा कोट अपराधी संत संग उदर है जम ता कै नेड़ ना आवे जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे तिन हर

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काड लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाई अपनी भगत प्रभ आप

आऊ चरण धूड तेरे जन की होवा तेरे दर्शन कौ बल जाई अमृत बचन हृदय उर धारी तौ कृपा ते संग पाई अंतर की गत तुद पह सारी तुद जेवड़े अवर ना कोई जिसनो लाए लह सो लागे भगत तुहारा सोई।

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पहर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म ना।

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाव सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंतै पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई।

निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय भावै प्यारा तै रवेसी, सूही महला पहला कर नौवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ, विण नावै भ्रम भुलिया।

सच्चे की लिव उबरै बक्षे बक्षण हार जियो अनको की जय मित्रा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया

रखै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलह गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम त्याई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखह आप देह सो पाई है तू देख है थाप थाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कब महाई है गर्भ मुसै कर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रहे निह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार अहन सत्याई है ज्यो राखै कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहूं साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखा लिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद पावै तिवै रजाए परम पौ भंजना जन्मत ही

किया आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रहया समाए सो विस्माद भया तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है गुरमुख वे

तीजा घर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाम ही ते सब किश होआ बिन सतगुरु नाम ना जापै गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदले जन्म गवाया कीन सनाही आपै गुरु

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा, साचा शब्द सुनाई। गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजै बिख खाए। जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए। अठसठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए।

तृष्णा यज्ञ बुझाए गुर कै शब्द राता सहजी माता सहजी रहिया समाय हर का नाम सत कर जाने गुर

अलाखना लखिया जाई मनमुख मुगद बूजै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाई सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाइए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बीचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाव भाव वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पा सारा पूरे सतगुरु आप दिखाया।

जो मर खाक थी। वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारी है वेला ना लहन। गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम परगासिया सहजे सुख रहन। गुर का शब्द वसारिया दूजे भाए रचन, तिस ना भूख ना उतरै अन दिन जलत फिरन। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन, आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन। निंदा भली किसे की नाही मन मुख मुग्द करन, मुह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। ए मन जैसा सेवह तैसा होवह, तेहे कर्म कमाए।

कोई अमृत भरे भरपूर है ओना तिल नात माए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेसेन सेवड़ भागी जे ओना मिल रहे अन दिन नाम लेन देसी रिजक संवाहे जिन उपाई मेदनी एको है दातार सच्चा आप धनी सो सच तेरे नाल है गुरमुख नदर निहाल आपे बख्शे मेल लय सो प्रभ सदा संभाल मन मैला सच निर्मला क्यों कर मिलया जाए प्रभ मेले ता मिल रहे हम मैं

0: मन रहाउ।
1: गुरु सरवर मान सरोवर है, वड भागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजिया, से हंसले नाम लहन। नाम त्याइन रंग सिउ, गुरमुख नाम लगन। तुर पूर्व होय लिखिया, गुर भाणा मन लेन। वड भागी घर खोजिया, पाया नाम निदान। गुरपूरै वे खालिया, प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है, दूजा अवर न कोए। गुर प्रसादी मन वसै, तित घट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसै सब थाए। मंदा किसनो आखिया, शब्द वेखो लिव लाए। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दोहो माहे। गुरमुख एको बुझिया, एक समाहे समाए। सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभ पाए थाए। जन नानक हर अरादिया, गुर चरणी चित लाए। राग सूही अष्टपदियां, महला चौथा कर दूजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हों तिस पह आप बचाई, दर्शन हर देख।

तुझ अराधी दुख पी तुझ त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड है पी त्याई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रह ता कोई केहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीहो वरसै पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुआ बहु खारा गुरसिख लंग गुर पह जाई ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यो सिख गुर बिन मर जाई ज्यो धरती सोभ करे जल बरसै त्यो सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का हुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगे नानक वेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुरसिख गुर देखण जाई सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैण दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्ति अगाई नानक का प्रभ पूर रहयो है जात।

महला चौथा अष्टपदियां कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने

गुर सलाहिय उठदिया पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ ता के धुआ पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलया हर पाया मिलया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना किते उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुर तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए।

प्रभु दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभु तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीव

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो। साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो, गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो, तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो। तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवां अष्टपदियां घर दसवां काफी,

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर की वै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया परपूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्ब लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्म ते बिन बूजे सब वाद जोनी भरम ते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के।

रास जियो तू सहु अगम अतोलवा कहो कह कह कह पयास जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भूख।

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देव सां, मैं मार्ग देहो।

प्रसाद हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

मिलिया भाई सुभाई, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले घर आई, घर आए अड़े साजना, ता तन खरी सरसी राम, हर मोहे अड़ी साच शब्द, ठाकुर देख रहंसी राम, गुण संग रहंसी खरी सरसी, जां रावी रंग राते, अवगुण मार गुणी घर छाया, पूरे पुरख बधाते, तस्कर मार वसी पंचायन, अदल करे विचारी, नानक राम नाम ने सतारा, गुरमत मिलह प्यारी, वार पायाड़ा बालड़िए, आसा मनसा पूरी राम, फिर रावे अड़ी शब्द रली, राव रहया नह दूरी राम, प्रभ दूर ना होई, घट घट सोई, तिसकी नार सबाई, आपे रसिया आपे रावे, ज्यों तिस दी वडियाई, अमर अडोल अमोल अपारा, गुरपूरे सच पाईए, नानक आपे जोग संजोगी, नदर करे लिवलाईए, फिर उच्चड़िए माड़िए, तेहो लोआ सिर ताजा राम, हों बिसम पई देख गुणा, अनहद शब्द अगाजा राम, शब्द विचारी करनी सारी, राम नाम निशानो, नाम बिना खोटे नहीं ठाहर, नाम रतन परवानो, पात मत पूरी पूरा परवाना, ना आवे ना जास्ती, नानक गुरमुख आप पछाणे, प्रभ जैसे अवनास्ती।

ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला ता सुहेला पा जंत अनहद बीना।

आप अपुल ना भुले जय जयकार करह तुद भाव है गुर कै शब्द अमुल्य हीनो नीच करो बेनंती साच ना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूही संत महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख सोहे लड़ा हर त्याव हो गुरमुख हर फल पाव हो गुरमुख फल पाव हो हर नाम त्याव हो जन्म जन्म के दुख निवारे बलिहारी गुरे अपने विट्टो हो जिन कार्य सब सवारे हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो सुख फल हर जन पाव हो नानक कह सुनो जन भाई सुख सोह लड़ा हर त्याव हो सुन हर गुण पीने सहज सुपाय गुरमत सहजे नाम त्याय जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ भागा अंदरों दुरमत दूजी खोई सो जन हर लिव लागा जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी तिने अन दिन हर गुण गाए सुन मन पीने सहज सुपाय जुग मह राम नाम निस्तारा गुर ते उपजै शब्द विचारा गुर

हमारा जुग मह राम नाम निस्तारा साजन आए गुठे घर माही हर गुण गावे है त्रिपट अगाही हर गुण गाए सदा त्रिपतासी फिर भूख न लागे आए दह दिस पूज हो हर जन की जो हर हर नाम त्याई।

जूनी वासा ज्योति ज्योत मलाई सच समाई सच नाए परगासा जिन्नी सच जाता से सच्चे होए अन दिन सच त्याएन नानक सच नाम जिन हिरदय वसिया ना विछड़ दुख पाएन सच्ची बाणी सच्चे गुण गाव है तित कर सुहला होई राम निर्मल गुण साचे तन मन साचा विच साचा पुरख प्रभ सोई राम सब सच वरतै सचो बोले जो सच करै सो होई जह देखा तह सच पसरिया अवर ना दूजा कोई सच्चे उपजै सच समावै मर जन्मै दूजा होई नानक सब किछे आपे करता आप करावै सोई सच्चे भगत सो है दरबारी सचो सच वखाणे राम घट अंतरे साची बाणी साचो आप पछाणे राम आप पछाण है तां सच जान है साचे सोजी होई सच्चा शब्द सच्ची है सुबा साचे ही सुख होई साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई तू ही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई राम तिस बिन अवर ना

हर पाया, बिन हर नावै मुक्त ना होई। नानक कामण कंतै रावे, मन मानिया सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए, हर वर पाव है सोई राम। सदा होवे है सुहागणी, फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई, गुरमुख बूझै कोई। हौ मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावे, शब्द समावे अंतर एको जानिया। गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई। नानक कामन पिर रावे अपना, राव रहे आ प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए, सच समाए सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई। हर सुख दाता

गुरमति घट चानन होआ। प्रब रब रहिया सब थाई राम, प्रब रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हम मैं मल खोई। गुरमत सच समाई

शब्द रवहु अनदिन शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए हर गुण गावह नारी अनदिन भगत करह गुर आगै सा धन कंत प्यारी गुर का शब्द वसया घट अंतर से जन शब्द सुहाई नानक तिन घर सद ही सोहिला हर कर किरपा घर आए भगता मन आनंद भया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे घट घट शब्द सुमाणी तेरे गुण गाव है सहज समाव है शब्दे मेल मलाई नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुर हर मार्ग पाई संत संगत सियो मेल भया हर हर नाम समाई राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भई।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अनदिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती

हर मन तनु गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यो रलिया माणी सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

परम गत पाई, पंच मेले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत पये शरीरा, गुर प्रसादी।

पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी, हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिया मस्तक भाग जीओ, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजै मन बैराग जीओ, हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जीओ, गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई, मन चिंदे

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए। हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए, मिलिया सहज सुपाए। अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए। सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए। निर्मल जल नाए मैल गवाए, भये पवित शरीरा। दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा। हर मंगल रस रसन रसाई, नानक नाम परगासा। अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी। हर नाम प्यारे शब्द निसतारी, अज्ञान अंधेर गवाया। ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया। जो प्रभ कहे सोई पर की जय, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज

सतगुर पाए चलो जीवत्या इव मरिया राम। जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै। पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावै। मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई। नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूही महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुर संत जनो प्यारा मैं मिलिया मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। हो मन तन देवा सतगुरै मैं मेले प्रभ गुणतासे। तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबासे। वड भागी हर पाया जन नानक नाम वगासे। गुर सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा। कर आव हो चिरी विछुनिया मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा। हाँ तुझ बाजो खरी उडीनिया ज्यों जल बिन मीन मराहा। वड भागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा। मन दह दिस चल चल भरमिया मन मुख परम भुलाया। नित आसा मन चितवै मन तृष्णा भुख लगाया। अनता धन धर दबिया फिर बिख पालन गया। जन नानक नाम सलाहे तू बिन नावै पच पच मोया। गुर सुंदर मोहन पाए करे हर प्रेम बाणी मन मारिया। मेरा हिरदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत वसारिया। मैं अंतर वेदन प्रेम की गुर देखत मन साधारिया। वड भागी प्रभ आए मिल जन नानक खिन खिन वारिया। सूही संत महला चौथा मारे हिस्वे जन हूं मैं बिखिया। जिन हर प्रभ मिलन ना दितिया दे कंचन वे वनिया। इन हूं मैं मार विगुतिया मोह माया वे सब कालखा। इन मनमुख मूड सजुतिया जन नानक गुरमुख उबरे। गुर शब्दी हूं मैं छुटिया बस आने हो वे जन। इस मन को मन बासे ज्यो नित पौंदिया। दुख रहन वे विहानिया नित आसा आस करेंदिया। गुर पाया वे संत जनो मन आस पूरी हर चौदिया। जन नानक प्रभ देहु मत्ती छड आसा नित सुख सौंदिया। सा तन

विषाय जन नानक हर प्रभु पाणिया राम राजया मिलिया सहज सुभाई इकत सेज हर प्रभु राम राजया।

गर्भ गवानू निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु हुए दासा जीवत मरिय भौजल तरिय जे थीवै कर्म लिखे आसा गुर से बीजै अमृत पीजै जिस लाभ है सहज त्यानू नानक शरण पया हर।

प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भवजल पार उतारा आद जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुर पूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो, गुण गोविंद गाओ नित नित,

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठाक

ली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिने अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किलविख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइय प्रभु त्याई है बहुड़ जोन ना आई है गुर चरनी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है हर गुण नित गाए नाम त्याए फिर

हर गुण निधि हर संतन कै वासिया राम संत चरण गुर सेवा लागी तिन्नी परम पद पाए राम परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

प्यारे मुख हर अरादे मेरा राम हर अरादे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई जल थल मही अल पूरन।

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल हुवै कटिए काल की फासी राम कटिए जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागे सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिए अवनासी।

सगली तप्त बनासी राम दुख पाप का डेरा ढाठा कारज आया रासी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच धर्म पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याई सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल महियल सोई जन नानक प्रभ की सरनाई तिस बिन अवर ना कोई मेरा घर बनिया बन ताल बनिया प्रभ परसे हर राया राम मेरा मन सुहया मीत साजन सरसे गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाइया गुर चरण लागे सदा जागे मन

काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरख चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़ आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

मैदान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ

भगवान अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाई, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जेवड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल थल महियल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पवजल उतरे पारा, नानक

प्राण आधारु गुरु सतगुरु कहे आजी साचा अगम बिचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख ना।

राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जी हो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा सूह वेश दुहागणी पर फिर रावण जाए।

रूग सुध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख हुए सो पलटिया हर राती साज शिंगार सहज सच पिर रावया हर नामा उर तार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मेली करतार नानक पिर पाया हर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूहविये निमाणिये सो सहो सदा समाल नानक जन्म सवार है अपना कुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त रचायुन आकाश पताला हुक्मे धरती साजियन सच्ची धर्मशाला आप उपाय खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संवाहेंदा तेरा हुक्म नराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला श्लोक महला तीजा सूहबता सुहागणी जा मन लै है सच नाम सतगुर अपना।

फिर मैं झूठ सब बिनस जाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने।

लाल हुआ रसना रती गुण सार, सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार। नानक करमी महल पाया फिर राखिया उरतार महला तीजा, मुंदे सूहा पर हर हो लाल करहो शिंगार। आवन जाना विसर गुर शब्दी विचार, मुंद सहावी सोहनी जिस कर सहज पतार। नानक सा धन रा

हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे गुर शब्द विचारी हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप बाड़िया लग पए गावारी जिन किए तिसह ना जाननी मनमुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया क्या जंत विचारी श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत सेजै कंत ना आवई इवें बिरथा जाए कामन पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार किया तो प्रवान है जा सहो धरे प्यार पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे तन मन सौपे कंत को तो नानक भोग करे महला तीजा काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार सेजै कंत ना आयो इवें भया विकार महला तीजा तन फिर एह ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति तन फिर कहिए सोए पौड़ी पै बिन भगत ना होवी नाम ना लगे प्यार सतगुर मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग सियो हम मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मरार पौ पाओ सब तिसदा सो सच वरतै।

सो पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर वेसन कोर साध भले अन्नातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावैनु सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

मैं तन अवगण एतड़े खसम ना फेरे चित महला पहला हौ बलिहारी तिनको सिफत जिना दैवात सब राती सुहागणी एक मैं दुहागण रात पौड़ी धर्मंगत जाचै दान हर दीजै कृपा कर गुरमुख लेहो मलाए जन पावै नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति ज्योत धर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग मह वरतै आप हर सेती प्रीत कर श्लोक महला पहला जिनी न पायो प्रेम रस कंत न पायो साव सुनिए घर का पौना।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

कुवार कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत पुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। रहाओ करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराई गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले।

ऊपर पुजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन्हो लिया उभारी रहाओ। नौ ढांडी दस मुंसफ धाव है रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापह नाही बहु बिस्टाला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जान कै अंतर दर्द ना पाई, राहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा नरन

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहर वदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला।

कहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

दया पत दाता, क्या एह जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में है एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अब मानना, जब अपनी जोत खिंच

आई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पाव है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाय मंगल नारी गाव है आय मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाई हर जन को मिलिया सुख पाइय हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे त्याई हर जीव आप वसै मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरे साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाई पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हम मैं माया शब्द जलाई डर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को सम सर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान।

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन चलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हमे पचे दीपक देख पतंगा सगल श्रृंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल जिन चाख्या तिस आया साद ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया बलावल महला पंजवां सर्ब कल्याण किए गुरदेव सेवक अपनी लायो सेव बिघन ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रव्या आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुरु तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

लागै पूरै कर्म कमावां। नानक की बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावां। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधिय निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूकै जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवां विखै बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संतां संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइय। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइय। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याई। दृष्ट धार मन बेदया प्यारे रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता बलावल महला पंजवा आप उपावन आप सधरना आप करावन दोष न लेना आपन बचन आप ही करना आपन विभव आप ही जरना रहाउ आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही अशालना जाई चलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बलावल महला पंजवा भूले मार गजने बताया ऐसा गुर वड भागी पाया सिमर मना राम नाम चितारी बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन काट मुक्त गुर कीना दुख सुख करत जन्म फुन मुआ चरण कमल गुर आश्रम दिया अग्न सागर बूढ़त संसारा नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा बलावल महला पंजवा तन मन तन अर्पौ सबे अपना कमन सो मत जित हर हर जपना कर आसा आयो प्रभ मांगन तुम पेखत सोभा मेरे आंगन रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों साध संग इस मन है उदारों मत बुद्ध सुत नाही चतराई ता मिलिए जा लई मलाई नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया बलावल महला पंजवा मात पिता सुत साथ न माया साध संग सब दुख मिटाया रव रहे आप प्रभ सब मह आपी हर जप रसना दुख ना व्यापी रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया शीतल पये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपताना

मिले निस्तरीय। बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द हृदय महचीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना।

मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भये परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई है मीता, चरण कमल सिंह लाई है चीता। हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझै हर हर गुण गावत। रहाउ सफल जन्म होवत बड़ भागी, साध संग रामह लिव लागी। मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमुख न विसरो परमानंदा। हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, भणत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणै बिहुना, दया तार अपना कर लीना। मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर मह आया। रहाउ भगत वच्छल पै काट नहारी, संसार सागर अब उतरे पारी। पतत पावन प्रभ बिरद भेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैन उपेखिया। साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायन। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी अलख अपेवा। गुण बेअंत प्रभ गहर गंभीर,

तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नान प्रभ तिन ही पाया। बलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घने, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुरे आणिया। बलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम हुआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संयोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटे दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुर नानक मेरी पैज सुवारी। बलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाता जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद सम्हारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तिण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवां मन मैं सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पैर प्रभ जानो नेरे रहाओ कहो नानक जाके निर्मल भाग हर चरणी ताका मन लाग बलावल महला पंजवां रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज घर आया रहाओ राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम हृद माहि त्याई नानक गुरपुरे सरनाई जिन्हें अपने नाम की पैज रखाई बलावल महला पंजवां सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिसे आगे ही मारे करतार नानक दास तां की सरनाई जा को शब्द अखंड अपार बलावल महला पंजवां ताप संताप सगले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन अरोग गुण गावो नित राम के एह अवखद जोग आए बसो घर देश मह एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न पहे लह गए बियोग बलावल महला पंजवां काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊट सधारे शत्रपथ संतन कै ख्याल रहाओ अहम बुद्ध को बिनसना एह तुर की ताल बहु जोनी जन्मह मरह बिख्या बिकराल सत बचन साधु कह नित जपह गोपाल सिमर सिमर नानक तरी हर के रंग लाल बलावल महला पंजवां सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जय कार जगतर मह लोचह सब जिया सो प्रसन्न पए सत गुर प्रभु कछ बिघन ना थिया जां का अंग दयाल प्रभ तां के सब दास सदा सदा वडियाईया नानक गुरपास राग बलावल महला पंजवां घर पंजवां चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृत मंडल जग साजिया ज्यों बालू घर बार बिन सतबार ना लाग गई ज्यों कागद बूंदार सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बीचार सिद्ध साधक गिरही जोगी ताज गए घर बार रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगह गावार कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार एक चाले एक चाल सह सब अपनी वार जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हर द्वार जन नानक हर का दास है राख पैज मरार बलावल महला पंजवां लोकन कियां वडियाईया बैसंतर पागो ज्यो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो जो प्रभ जियो दयाल हुए तो भगती लागो लपट रहो मन बासना गुर मिल एह त्यागो रहाओ करो बेनती अत घणी एहो जियो हमागो अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो पंच संग गुरते छुटे दुख अर रागो हृदय परगास प्रगट भया निसबासुर जागो सरल सुहागन आया जिस मस्तक भागो कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो बलावल महला पंजवा लाल रंग तिस को लगा जिस के वड भागा मैला कदे ना होवे नह लागे दागा प्रभ पाया सुख दाईया मिलिया सुख पाए
सहज समाना पीतरे।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी, रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे, तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिर्त कनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे, तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारी। बुलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा, रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा अवर नहीं चारा। ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा, जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता, चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे, बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझे। सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अभागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

सर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदारन साध प्रभ इन लागो पाल, मोको दीजे दान प्रभु संतन पगराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल।

जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूटी है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाऊ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची भई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया भई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाऊ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखु सुमान भगत जना का लूघरा ओड नग्न न होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेट तसाद का नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तार हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाव मनोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरै अनकत है ना तावो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाऊ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक शिदर मन मैं ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरै प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आन स्यो सोरलिये खे रहाऊ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरने
दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अन्यास, सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे,

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवां सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हार ना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइय ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

जापै, हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई, के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई, सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बुलाई, महामंत्र नानक कथ है हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत, गुरपूरा जिस भेटिया ता कै सुख परवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश। रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार, मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव, निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबहु ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा, कृष्ण बुझी ममता गई नाथे भय परमा, थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब सी

ही तरे कुल कटंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पके जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा प्रातन इयों सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको भओ नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समगरी मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब

नानक करिया साध संग हर हर गुण गाव। बलावल महला पंजवां। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तौ छुटै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड। सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाय महामीत तिस स्यों तेरा भेद। बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना। तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार। जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा। पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच। पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम। कथा कीर्तन हरे।

भगतन की रास तोट ना आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किसी ऊन ना दिसे संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसे जय जयकार सबे करहे सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिय होइए आरोग राम चंद की लष्टका

जिस सिमरत सुख पाई है बिनसै बेयोग नानक प्रभ शरणागति करन कारण जोग राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया।

राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाऊ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बलावल महला पंजवा कर तर मस्तक थापिया।

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ता की निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हई।

रोग मटाए जिवालियन जा कावड़ परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शिवां

दाती मिल संगत हर गुण गाए रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाए सबहू तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हौ मोको सतगुर मंत्र दरडाए अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाई जो जो सरल परे ओ

नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझ चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करो सोई पल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ

पंजवां संतन कह सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिनस अर रात रहाव कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवां राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रतना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती।

अपर अपारा, एक बस तीरन एक संपूर्ण, एक है प्राण अधारा, निर्मल निर्मल सूचा सूचो, सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा, बिन हर काम न आवत हे, जा स्यो राच माच तुम लागे, ओह मोहनी महावत हे रहाओ, कनक कामनी सेज सोहनी, छोड़ खिनह मैं जावत हे, उर्ज रहयो इंद्री रस प्रेरियो, बिखैठ गौरी खावत हे, त्रिण को मंदर साज सुवारियो, पावक तलै जरावत हे, ऐसे गढ़ मह ऐठ हठीलो, फूल फूल क्या पावत हे, पंच दूत मूंड पर ठाटे, केस गहे फेरावत हे, दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी, सोई रहो मद मावत हे, जाल पसार चोग बिस्थारी, पंखी ज्यों फहावत हे, कहो नानक बंधन काटन को, मैं सतगुर पुरख त्यावत हे। बिलावल महला पंजवा, हर हर नाम अपार अमोली, प्राण प्यारो मन है अधारू, चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाओ, सहज समायो गुर है बतायो, रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रिय मुख लागो जो वड भागो, सुहाग हमारो कतो ना डोली, रूप ना धूप ना गंध ना दीपा, ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रिय रवि सुहागन, अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा, गोविंद गोविंद गोविंद मई, जब ते भेटे साध दयारा, तब ते दुर्मत दूर पई रहाओ, पूर्ण पूर रहो संपूरन, शीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा, तन ते होए सगल खई, सत संतोख दया धर्म सोच, संतन ते एहो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया, किन को सगली सोज पई।

सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिए किस कथन ना जाई, जह जह देखा तह रहे आसमाई रहाओ। जह महाभयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुरु नानक कौ बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवां, अगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमुख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेटले, संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत शरण संत टहल करी, धंद बंद अर सगल जंजारू। अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर कनो अनंदा। गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बन ना साको। गुर पूरे मेरी उल्ट तरी, पेखियो मोहन सब कह संगे। ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहियो कृपा नित। कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे। तिस आगे क्या कहता रहाओ, अनबोले को तुही पछान है। जो जीन मह होता रे मन काए, कहां लो डह कह। जो पेखत ही संग सुनता, ऐसो जान भये मन आनंद। आन ना बियो करता, कहो नानक गुर भये।

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही ताकि

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइय एहो निदान। जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दरगाह का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान। कहो नानक ता की सरनाई, जा का किया सगल जहान। मिलावन महला पंजवां, मन ताने अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर पकार नित, तिस रसना का मूल किछ नाही रहाओ। कुल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताके, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला।

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकत सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखै अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोट जतन पए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ बड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

तेरे काटिया हिन मैं हुई गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब पाई साक कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक बलावन महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेवा आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव रहाउ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

अहस्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वशल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर ध्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान भ्रम पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दूए थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्य हुए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु धूरे आवन जान रहे थित पाई जन्म मरण के मिटे बिसूरे भ्रम पै तरे छुटे पै जम के घट घट एक रहया पर पूरे नानक सरण परयो दुख भंजन अंतर बाहर पेख हजूरे बलावल महला पंजवा दर्शन देखत दुख नस्ते कभो न हो वो दृष्ट अगोचर जी कै संग बसे रहाओ प्रीतम प्राण आधार स्वामी पूर रहे प्रभ अंतर जामी क्या गुण तेरे सार समारी सास सास प्रभ तुझे

विश्वंबर पूर्ण सुखदाता सगल समगरी पोखण भरन थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन आदि जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं दरन राग बलावल महला पंजवां दुपदी घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव नगर मह आप बाहर फुन आपन

पत च पावन प्रभ बिरद तुम्हारू हमरे दुख हृदय मत तारू जीवन प्राण हर धन सुख तुम्ही हम मैं पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारू जन नानक प्यास।

फसल पया गुर पूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहे हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलावल महला पंजवां बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदारन राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसी औद बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवां।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पिट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवों नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब

जोग जग निःफल ते मानो जो प्रभ जस बिसरावे मान मोह दोनों को पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक एह बिद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलावल महला नौवां जा मैं भजन राम को नाही तेह नर जन्म अकारथ खोया यह राखो मन माही रहाउ तीर्थ करे व्रत फुन राखे नह मनुआ बस जाको निःफल धर्म ताहे तुम मानु साच कहत मैं जाको जैसे पाहन जल मह राखे हो भिदे नाही ते पानी तैसे ही तुम ताहे पछानु भगत हीन जो प्राणी कल मैं मुक्त नाम ते पावत गुर यह भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभु के गुण गावे बलाव

आप न बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावे दर कर महल ठौर कैसे पावे हर जियो सेवी अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी।

समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई, दुख काटै हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार, बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे आप खाए हों मेटै, अन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाउ, एक गिरहो दस द्वार है जाकी, अहनस तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावह, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता, खेवट शब्द गुर पा

नानक हर गुर सरण समैया बलावल महला चौथा मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया गुर देखे शरदा मन पूरी ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया मिल मिन सखी हर कथा सुनैया सतगुर दया करे प्रभ मेले मैं तिस आगै सिर कट कट पैया रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया वैदिक नाटक देख पुलानी मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया हौं खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम ज्यों बिन अमलै अमली मर गैया जिनको प्यास हुए प्रभ केरी तिन अवर ना पावै बिन हर को दुइया कोई आन आन मेरा प्रभु मलावै हौं तिस विटहो बल बल घुम गैया अनेक जन्म के विछड़े जन मेले जां सत सत सत गुर सरन पवैया सेज एक एको प्रभ ठाकुर महल ना पावै मन मुख परमैया गुर गुर करत सरन जे आवै प्रभ आए मिलै खिन ढील ना पैया कर कर किरिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसवा कह कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर पाया जां हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पसाई आपे कोल कोल अंग लैया जिनको ठाकुर कृपा तारी बाहा पकड़ नानक कढ़ लैया राग बलावल महला पंजवा अष्टपदी घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की उपमा जात ना कही ताजे आन सरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौं जाऊं सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार पै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जां की महा बिखड़ी कार तां की मित ना जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवा प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

तार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी लेहो हर नाम अपना देहो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाई पै पंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण दे गोपाल सर्व घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार नराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट दे

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवण जाने, क्या लै आवे है क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा, अष्ट दशा।

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अराधे पौन पानी अग्नि बिसराउ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहया लिवलाय प्रणवत नानक काल न खाय नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

पत खोए डर मह घर घर मह डर जाने तख्त नवास सच मन पाने चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाए खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझो हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहि मनमुख भूले।

0: बिनस बनासा फूटे खपर दुबदा मनसा ममता जालते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा।
1: बलावल महला तीजा वार सत कर दसवां।

आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

बार दिन सनहण तिवें संसार आवागौण किया करतार निश्चल साच रहया कल धार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आदि पुरख आपे सेठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अभागे सतगुर भेटिया सो जी पाए परपंच चूकै सच समाए जां कै मस्तक लिखिया लेख तां कै मन

काय परमे फूला आवे जाय सतगुर सेवै सो जन बूझै हमें मारे ता दर सूझै।

कह कोई। साहिब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे दे वड़ियाई, किसते ऊपर नाही कोई। कौन डरे, डर किसका हो।

हार धरी हर लिवलाई राम लिवलाए हर स्यो रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंदन।

हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम वड भागिया सोहागनी हर मस्तक माना राम हर प्रभ हर सोहा।

आया। हर हर लिव लागे राम, अंतर कमल पर गासिया। गुर ज्ञानी जागे राम, जन नानक हर प्रभ पाया। पूरे वड भागे राम, हर प्रभ हर मन पाया। हर नाम वधाई राम, गुर पूरे प्रभ पाया। हर हर लिव लाई राम, अज्ञान अंधेरा कटिया। जोत प्रगट आई राम, जन नानक नाम आधार है। हर नाम समाई राम, तन हर प्रभ प्यारे राविया। जा हर प्रभ भाई राम, अखी प्रेम कसाईया। जो बिलक मसाई राम, गुर पूरे हर मेलिया। हर रस अघाई राम, जन नानक नाम बिगसिया। हर हर लिव लाई राम, हम मूर्ख मुग्ध मलाया। हर कृपा तारी राम, तन तन गुरु साबास है। जिन हों मैं मारी राम, जिन वड भागिया वड भाग है। हर हर पुर तारी राम, जन नानक नाम सलाहे तू। नामे बलिहारी राम।

मिल संते आए प्रभ ते आए बने अचरज जानिया मिल अकत्तर होए सहज ढोए मन प्रीत उपजी मानिया मिल जोत जोती पोत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा धरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरणी लागी राम गुरचरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत धूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंदिन वजह वाजे अहं मत मन की त्यागी बिनवंत नानक सरन स्वामी संत संग लिव लागी बलावल महला पंजवा भाग सलखना हर कंत हमारा राम अनहद बाजितरा तिस धुन दरबारा राम आनंद अंदिन वजह वाजे दिन सरैन अमाहा तह रोग सोग ना दुख ब्यापै जन्म मरन ना ताहा रिद सिद्ध सुधारा से अमृत भगत भरे भंडारा बिनवंत नानक बलिहार वन्या पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सखे सहेलरियो मिल मंगल गावह राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावह राम कर प्रेम रावह तिसै भावह एक निमख पलक ना त्यागी है गह कंठ लाइय नह लज्जाई है चरण राज्य मन पागी है भगत ठगौरी पाए मोह है अनत कतहु ना ताव है बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावह बिस्मन बिस्म भई पेख गुण अबनासी राम कर गह पुजा गही कट जम की फासी राम गह पुजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोत जनाया मलन मोह बिकार नाठी दिवस निर्मल आया दृष्ट धारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक भई निर्मल प्रभ मिले अबनासी सूरज किरण मिले।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप भुगता आप कारण किया बिनवंत नान।

वस आओ सखी असि तिरका मंगल गावै तजमान सखी तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

चित्तर चंचल अनक भाव दिखावे होए तीत मीठी मनह लागे नाम लैण ना आवे ग्रह बनह तीरे बरत पूजा बाट घाटे जोहनी नानक पयम पै दया धारहु।

नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भना मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा।

पियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जीओ संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ ताज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचारन रसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम भ्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिया हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इश पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस पिन्याड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जलह।

था हरि उत्तम हर प्रभु गावया करनाद बलावल राग अपदेश गुरु सुन मन्निया तुरमस्तक पूरा भाग सब दिन सरहन गुण उच्चरै हर हर हर उर लिव लाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चराग जन नानक जीवै देख हर एक निमुख घड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिय जब मुख होवै नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागै सहज ध्यान राग नाद छोड़ हर सेवी ता दरगाह पाइय मान नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी चूकै मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद अपाया तू आपे आप वरतदा सब जगत सबाया तुद आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया हर त्याव हो भगत हो दिन सरात अंत लय छाया जिन सेव्या तिन सुख पाया हर नाम समाया सलोक महला तीजा दूजे पाए बलावल ना होवे मन मुख थाए ना पाए पाखंड भगत ना होवे पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हट कर्म कमावणी थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप बिचारी है विचो आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म वस्या मन आए जम्मन मरना कटिया ज्योति ज्योत मलाए महला तीजा बलावल करे हो तुम प्यारे हो एक सस्यों लिबलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रह समाए सदा बलावल आनंद है जे चल है सतगुर पाए।

निदान सुखदाता तेरे मन वसै हमें जाए अभमान नानक नदरी पाई अमृत गुणी निदान पौड़ी जितने पातशाह सहारा जे खान उमराव सिकदार है कितने सब हर के किए जो किस हर करावे सो ओहे कर है सब हर के अर्थिये सो ऐसा हर सबना का प्रभ सतगुर कै वाल है जिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गोले कार।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर, हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान ना लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै, करमी सतगुर भेटियै ता सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए, अंदरों भ्रम भउ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाम मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना, नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनो जन भाई, सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे, सिर धंधा नित मार, दूजै पाए सूते कबहू ना जाग है।

हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया। नानक जम मार करे खुवार पौड़ी, जिसनो हर भगत सच बख्शियन। सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा, होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवै, सो हर रास लए वे मुख पास।

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत भरम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम मैं शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरे धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्ण महादेव त्रै गुण भुले हमें मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा भ्रम भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश हो।

सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द बीचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हम मैं माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ये मारी ना मरे ना ये हट बकाए गुर कै शब्द पर जालिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर।

तो सबना का अपमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुर नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे भ्रिष्ट थान जन नानक कै वल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पै

दूर मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच पूर नानक बख्श मलायन सच्चा शब्द हदूर महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहिला गुरमुख नाम गोविंद अन दिन नाम सलाहना हर जपया मन आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ ना मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवै सतगुरु का फिर शरण गुर आवै पिछले गुनहा सतगुर बख्श लय सत संगत नाल रलावै ज्यों मीह उठै गलियां नालियां टोबियां का जल जाए पवै विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावै एह वडियाई सतगुर नरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरै हर शांत तड़ आवै।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाखस नख बिदरियो घर के देव पितर की छोड़ी गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संतहां लै उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा एह भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा रहा तेरो जन हुए सोए कत डोले तीन भवन पर साजा हाथ पसार सकै को जन को बोल सकै ना अंदाजा चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसा भ्रम चूको ध्रुव प्रहलाद नवाजा बलावल राख ले हो हम ते बिगरी सील धर्म जप भगत ना कीनी हौ अभमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची एह काया एह मिथ्या काची गगरी जिन्ह नवाज साज हम किए तिसे बसार अवर लगरी संदक तोहे साध नहीं कही ओहो सरन परे तुमरी पगरी कह कबीर एह बिनती सुनियो हो मत काल हो जम की खबरी बलावल धर्मां दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजै खोल कवार रहाओ तुम तन तनी उदार त्यागी श्रवणन सुनियत सुजस।

भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाउ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज बीचार कह कबीर सेवा करहो मन मंज मरार बलावल जन्म मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ काशी ते धुन उपजै धुन काशी जाई काशी फूटी पंडता धुन कहां समाई त्रिकुटी संध मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बलावल चरण कमल जा कह हृदय बस है सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निदता कै सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब एह मत जो सब मह पे

वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानी है जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करै, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लई, मेरे मन हर जप हर नित पड़ै, हर बिन को मार जवाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़ै रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरै, हर एक को बोलै हर एक बुलावै, गुर पूरै हर एक दिखै, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरै, निह कपट सेवा कीजै हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पई, जिस दै वस सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ै, गोंड महला चौथा।

कबीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजाव हो, हर दर्शन शांत शरीर। शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता। ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता। भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता। निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई। तू उर्ज रहो संभाए ले, पग धार है सास लेख लै। तो उदर है हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले।

फिर बिछड़े थिर संगत हर हर त्याए ले। जैसे मीन रसन साध बिनसियो ओह मूठो मूड लभाए ले। तू हो आ पंच वास वैरी कै छूट है पर सरनाए ले। ओह कृपाल दीन दुख भंजन।

राग गोंड महला पंजवा चौपदे हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी मह जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कै परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटै कोट अग निमक जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा।

तिहाय काटे अवकट जट कतह सहाय रहाउ रंक राहु जाके एक समान कीत हस्त सगल पुराण बियो पूछना मसलत तरे जो किस करे सो आपे करे जाका अंत न जान सकोए आपे आप निरंजन सोई आप अकार आप निरंकार काट काट काट सब काट आधार नाम रंग भगत भय लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अगाए नानक तिन जन लागे पाए गोंड महला पंजवा जा कै संग इहो मन निर्मल जा कै संग हर हर सिमरन जा कै संग किल बिख होहे नास जा कै संग हृदय परगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ जा कै मंत्र हर हर मन वसै जा कै उपदेश परम पौ नसै जा कै कीर्त निर्मल सार जा की रेन बांछै संसार कोट पतत जा कै संग उधार एक निरंकार जा कै नाम आधार सर्ब जिया का जानै पेओ कृपा निदान निरंजन देव पार ब्रह्म जब पये कृपाल तब पेटे गुर साध दयाल दिन रैन नानक नाम ते आए सुख सहज आनंद हर नाय गोंड महला पंजवा गुर की मूरत मन मह ध्यान

के सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन न जाय, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा। गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है वड भागी,

जप नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माई उत्पुज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छड़ाई जिसके सेतन रखे हटाई कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब होए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी कर

नानक निस्तरीय गोण महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध इस तन ते मार होए रही है सगल की रीना। घट घट रमैया सब मह चीना इन बिद रमहु गोपाल गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। आठ पहर हर के गुण गाओ जी प्राण को एह सुआओ। ताज अभमान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर स्यो मन रंग। जिन तू किया तिस को जान आगे दरगाह पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगेर वाला। हो दयाल देहो प्रभ दान नानक जप जीवै प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न भये वड भाग आठ पहर गाइय गोविंद। तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहाओ। हर गुण रमत भये आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बख्शंद। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मलाए। कर्म धर्म एह तत् ज्ञान साध संग जपिए।

नारायण साधु संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जा कौ राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ मह अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए, जे को बहुत करे अहंकार

लागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच वापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां महा।

अमराव पतियाय दुष्ट अहंकारी मार पचाई निंदक कै मुख कीनो रोग जय जय कार करे सब लोग संतन कै मन महा आनंद संत जप है गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पए सगल थान निंदक के गए सास सास जन सदा सलाहे पार ब्रह्म गुर बे परवाहे सगल पै मिटे जाकी सरन निंदक मार पाए सब धरन।

निंदक अहंकारी जान पाल मान है निंदक वेकारी। गुर कै सिख सत गुरु ते आया जान उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरत है हर द्वारी। जैसा करे सो तैसा पाई अभिमानी की जाड़ सर पर जाए। ने धरया सत गुर धर तेरी कर कृपा रख हो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा कै सिमरन पै जसवारी। राग गोंड बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिलै किस सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूर्ख स्यों बोले झक मारी बोलत बोलत बढ़ बेकारा। बिन बोले क्या करह बिचारा। कहो कबीर शूशा घट बोले भरिया हुए सो कबहू ना डोले। गोंड नरु मरै नर काम न आवै पशु मरै दस काज सुआरे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो मैं क्या जानो।

तरपे ना जानो बाप बीतला बाहां दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूतला नाम देहो नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम ले उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे प्राण अजय मलकियो बैकुंठ है थान सुआ पढ़ावत गण का तरी सो हर नैनहु की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपट है भरी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जास जपत पै अपदा टरी गोंड पैरो भूत शीतला धावै खर बाहन उहशार उडावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदलावन दै हो रहाउ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करै नर सह नार हुए अवतरै तू कहियत ही आद पुहानी मुक्त की बरिया कहां छपानी।

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर मानक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत काड काड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिण उले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाई, राम जन गुरमत राम बुलाई, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाई रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेट हाय, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाय, हर के लोग राम जन नीके, पागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाए, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जन उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय

सुख होई, जो इच्छो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संत हो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

तू सागर हम हंस तुम्हारी, तुम मेहमान कलाला। तुम देव हो तिन संक न मानहु, हम पुंच है सदा निहाला। हम बारक तुम पिता हमारी, तुम मुख देव हो खीरा। हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम सदगुणी गहीरा। तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण, हम पी संग अगाए। मिलत मिलत मिलत मिल रहे।

बाजै जिहवा तोने अगाजा निरत करे कर मनुआ नाचै आनी घुंघर साजा राम को निरतकारी पेखै पेखन हार दयाला जेता साज शिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पंच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चंद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक है पीतर साथे भिन्न भिन्न हुए भाव दिखावे सबहु नरारी पाखे कर कर निरत होऐ दिन राती कट कट वाजै तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचै जिस गुर भेटै पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग वसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत।

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मह पवन समाया, ज्योति मह ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक, रोव नहारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बीचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ, अगली किश खबर न पाई। रोव नहार पे उठ सधाई, परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध, एहो तौ रचन रचिया कर।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

सर्व प्रतिपाल नानक रातो रंग गोपाल राम कली महला पंजवा मुखते पड़ता टीका सहत हृदय राम नहीं पूर्ण रहत अपदेश करे कर लोक दरडावे अपना कहया आपना कमावे।

करतार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ कै सरंजाम रहाउ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

लाज रह। हर सिमरत जम कछ ना कह रहाउ, बिन हर सगल नरार्थ काम, सोइना रूपा माटी दाम। गुर का शब्द जाप मन सुखा, इहां उहां तेरो उजल मुखा, कर कर थाके

महापुरुष का संग भया रहाउ, सगल पवित्र सर्व निर्मला, जो वरताए सोई भला, जह राखै सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अठ सठ तीरथ जह साध पग तरह, तह बैकुंठ जह नाम उच्चरह, सर्व आनंद जब दर्शन पाई, राम गुणा नित नित हर गाई, आपे घट घट रहे आप आप, दयाल पुरख प्रगट प्रताप, कपट खलाने भ्रम नाठे दूरे, नानक कौ गुर भेटे पूरे, राम कली महला पंजवा, कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनक रूप

जाग हर हर जाप जपला गुर कृपा ते हृदय वासै पौजल पार परला रहाओ नाम निदान त्याए मन अटल ता छूटह माया के पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा होए निर्मल जियो सोदत सोदत सोद बीचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सो हर भजन साध कै संग मन तन रापै हर कै रंग छोड़ सियाणप बहु चतराई मन बिन हर नावै जाए ना काई दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया संत प्रसाद कमल बिगसाया नाम रतन जिन पाया दान तिस जन होए सगल निदान संत

जिस हृदय वसाई नानक ते जन उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गौ कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ कहो नानक जो त्याग दई तब ओह चरणी आए पई सुन संतो हो निर्मल विचार राम नाम बिन गत नहीं काई गुर पूरा भेटत उदार रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गमान जब उसको कोई मन पर हरे तब ओह सेवक सेवा करे।

इसह त्याग सत संगत करै वड भागी नानक ओ तरै राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्ब मह पेख पूर्ण पूर रहे आप।

परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे निरपहो निरंकार दातार तिस स्यो प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साह वे मोहताज पूरा पातशाह मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरह नानक तरिया तेरी मेहर राम कली महला पंजवां।

खोजहु संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाव। गण में देखो हो सगल विचार, नाम बिना को सके ना तार, सगल अपाव ना चाल है संग, पव जल तरिय प्रभ कै रंग, देही धोए न उतरे मैल, हों मैं व्यापै दुबदा फैल, हर हर औखद जो जन खाए, ता का रोग सगल मिट जाए, कर कृपा पार ब्रह्म दयाल, मन ते कभो न बिसर गोपाल, तेरे दास की हो आतूर, नानक की प्रभ शरदा पूर, राम करे महला पंजवा, तेरी शरण पूरे गुरुदेव, तुद बिन दूजा नाही कोई, तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म, सो त्याए पूरा जिस कर्म, तरन तारन प्रभ तेरो नाओ, एका शरण गही मन मेरा,

दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिन सहराचै हर नाए, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत, पौ भागा निरपौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे पाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे, टूट ना आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै।

का पूता हर भगता हवालै होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कछ तोट ना आवे अंत नहीं हर

दोष करत तह हरक ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप दिवाया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख ना

में नहीं जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गाते आप जाने सुन सुन अवर बखाने रहाऊ संकरा नहीं जाने भेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरे आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट भव खंडे निमुख ख्याल सगल अराध जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट राता मेरा प्रभ रहाउ ता की गही मन ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाउ नानक जपिया गुरु।

आप सगल मटाए मन किंडे से फल पाए हो सावधान अपने गुर सियों आसा मनसा पूर्ण होवे पावह सगल निदान गुर सियों रहाओ दूजा नहीं जानै कोई सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप ना जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवर आसा सब लाए हर का नाम मांग निदान ता दरगाह पावह मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पए दयाल नानक दास निहाल राम कले महला पंजवा होवै सोई पल मान अपना तज अभमान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुआओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भव जले उतर है।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे न दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छुडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोए सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब हो वह मीत निर्मल तेरा हो वह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उदार जन्म जन्म का उतरे पार पूरन तेरी होए आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजे नानक सुख सहज समीजे राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी करमान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए किसह अराध सदा सुख होए काहे भ्रम भ्रम है बेगाने नाम बिना किस काम ना आवे मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाओ जो जो करे सोई मान ले हो बिन माने रल हो वह छे किसका पाणा।

जिस चेते आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गनन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलख।

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापयो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जनका राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जाका प्रताप, राम कली महला पंजवां, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

ओ नमो भगवंत गुसाई खाल करव रहया सर्ब ठाई रहाउ जगन्नाथ जग जीवन माधो पौ भंजन रिदमाहे अराध।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डी।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि नवारी सत गुरु देव, सेव के अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगियाड़ी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोविंद, कर कृपा राखियो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शिंद, रहाउ दाज गए त्रिण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अंध रूप प्रग

जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो हो साध प्यारे, मुख उज्जल साचै दरबारी, आनंद करहो तज सगल बिकार, नानक हर जप उतरोह पार। राम कली महला पंजवा, ईंधन ते बै संतर भागै, माटी को जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तले आकाश, घट मह सिंध कियो परगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमख न बिसरै जी भगतन कै।

तिन सह अभमान, एक त्याई साध कै संग, पाप बनासे नाम कै रंग, गुर परमेश्वर सगल निवास, काट काट रव रहया गुणतास, दर्श दे तारू प्रभ्यास, नित नानक चितव सच अरदास, राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, गावु राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाईए, आवागौण मिटै मेरे मीत रहाओ, गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मैं हुए निवास, संत संगत मैं हुए उदार, नानक पवजल उतरस पार, राम कली महला पंजवां, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बनासे रोग कूरा रहाओ, एक अरातो साचा सोए, जा की सरन सदा सुख होए।

बिरख श्यामनी चरण कमल सरन नानक सुख संत पावनी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग राम कली महला नौवां ए पदे रे मन ओटले हो हर नामा जा कै सिमरन दुरमत नासै पावह पद निर्बाना रहाउ बड़ भागी ते जन कौ जानहु जो हर के गुण गावै जन्म जन्म के पाप खोए कै हुन बैकुंठ सधावै अजामल कौ अंत काल में नारायण सुध आई जा गत को जोगी सर्वांशत सो गत शिन मह पाई नाहिन गुण नाहिन कश विद्या धर्म कौन गज कीना नानक बिरदरा।

अब कीजै जाते दुर्मत सगल बनासै राम भगत मन पीजै रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझै नह।

सुबा सुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध कटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरना को बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सोते क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार होए परवाना करे तिंगाना कल लखन विचार रहाउ कितै देश ना आया सुनिया तीर्थ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल।

लखन एई जिस सकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदार पवै जंजीरी ता चाकर हथों।

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कतेब करान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुखदा दुख भागे धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ गावह गीत ना चीनह आप क्यों लागी निवरै प्रताप गुर कै शब्द रचै मन पाए तिख्या सहज विचारी खाए पसम चढ़ाए करह पाखंड माया मोहे सह जम दंड फूटै खापर भीख न पाई बंधन बांधिया आवे जाए बिंद न राख है जति कहावह माई मांगत त्रै लभावह निर्दया नहीं जोत उजाला बूढ़त बूढ़े सर

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रिभिद लोगा त्रिभिद जोगा, शब्द विचार है चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ नित तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाई, सतगुर भेटै मेल मलाई, नाम रतन निर्मोल कहीरा, तितराता मेरा मन पीरा, हौं मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का भौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार भय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, लिपत गुफा महर है निरारी, तस कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए न

तत् परुता जग सूता मारे आवे जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए अनहद शब्द बजे दिन राती अवगत की गात गुरमुख जाती तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहिया निर्वाणी सुन समाद सहज मन राता।

जह सैला बिन हर राती मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ मुक्त प्राण जप हर किरतारथ वाचे वाद ना बेद विचार आप डुबे क्यों पितरा तारे कट कट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुर मिले ता सोजी होए गणत गणिय सहसा दुख जीए गुर की सरन पवे सुख थीए कार्य अपराध सरन हम आया गुर हर पेटे पुरब कमाया गुर सरन ना आईए ब्रह्म ना पाईए परम पलाईए जन्म मर आईए जमदर बहंत हो मरे बेकार ना हृदय नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिस्र कहावे है दुखदा राते महल ना पावे है जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मध्य को जन आपार एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक गुरमुख।

राम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया सीजै वर्त तपन कर मन नहीं पीजै राम नाम सर अवर ना पूजै गुरसेव मना हर जन संग कीजै।

गुण भिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन संघासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीरज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लहीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर महल तीर्थ परमीजै।

सुंदर दुंदर पास तरीजै, तुरकी सेवा राम रुबीजै, नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही है सो प्रभ ते होई, जुगा जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत पर लहो अवर ना कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जम तीर रहाउ, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल, एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावह पेवा, शब्द विचार गह गुर सेवा, मन तन निर्मल अभमान अभेवा, कर्म मिले पावे सच नाउ, तुम शरणागत रहो स्वभाव, तुम ते उपजेओ भगति पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाउ, हऊ मैं गर्भ जाई मन पीने, झूठ ना पावस पाखंड कीने, बिन गुर शब्द नहीं घर बार,

योग जुगत एव पाए नगरी आवंदा सब किस बिनसै हर सेती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सोझी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कतंब छोड़ पर भवन करहै ग्रह शरीर मह हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन भेख करे जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जोग जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों भरम चुकाए बिन बजाई

सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोइन देख रहे बिस्मादी एता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हों गुरसलाही सदा अपना।

हर की पूजा दिलंब है संतोह, कहना कछु ना जाई, संतोह गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतोह, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होए, पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोक संतोह, मनमुख थाई ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतोह, एह पूजा थाई पाई, पित पावन से जन साचे, एक शब्द लिव लाई, बिन नावे होर पूज ना होवी, परम भुली लोकाई, गुरमुख आप पछाणे संतोह, राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करह पर विद नहीं जान है, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख हो ऐसो पूजा जाने, पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संत हो, अंते नाम सिखाई, अपना आप ना पछाण है संत हो, कूड़ करह वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गुआई, जिने अंतर शब्द आप पछाण है, गत मित तिन ही पाई, एह मनुआ सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाण है, सत संगत में

भय भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाउ पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जूए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरतारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी भय बिन भगत न होई कब ही भय पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औ गावा शब्द बीचारी हर जियो जपी।

विच हो आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया, अखोट सच्चे पंडारी, अपनिया भगतानो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश है तिसका, आखन बिखम विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे, पव जल पार उतारी, बिन हर साचे को पार ना पावे, बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सुवारी, काया कंचन शब्दे राती, साचे नाई प्यारी, काया अमृत रही परपूरे, पाई है शब्द विचारी, जो प्रभ खोज है से ही पाव है, और फूट मुए अहंकारी, बादी बिन सह सेवक सेव है, गुर कै हेत प्यारी, सो जोगी तत ज्ञान विचारी, हम मैं तृष्णा मारी।

अहंकारी जिचरअंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर विटों बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उभरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

किछ करना सो कर रहया अवर ना करना जाय। आपे साजे सृष्टि अपाए सिर सिर तंदै लाई, तिसह सरेवो तां सुख पावहु सतगुर मेल मलाई। अपना आप उपाय लख न लखना जाई, आपे मार्ज वाले आपे तिसनो तिन ना तमाई। एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पलाई। बड़ा दाता गुरमुख जाता नगुरी अंध फिरै लोकाई, जिन्नी चाखिया तिन्ना साध आया सतगुर बूझ बुझाई। इकना नाम हो आप पलाई, इकना गुरमुख दे बुझाई। सदा सदा सलाहे हो संतो हो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पा।

हर आधारा किन्हीं कुंगर निर्त कराई किन्हूं वर्त नेम माला पाई किन्हीं तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्हीं सिद्ध बहु चेटक लाए किन्हीं पेख बहु थाट बनाए किन्हीं तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतुर कहावे पंडत को खाट कर्म सहत स्यों मंडत कोई करे अचारस करनी मोहे दीन हर हर हर सरनी सगले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नामे एहु मानना प्रबोदे कहो नानक जो साध संग पाया बूजी तृष्णा महासीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माती काले देहरा करया उक्त जोत लै सुरत परीखिया मात गर्भ मह जिन तू राखिया राखन हार समार जना सगले छोड़ बेचार मना रहाउ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बंता अरमीता तिस ठाकुर को रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना शक्ति अमृत जिन भोजन दिए अंतर खान ठहरावन को दिए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन को नेतर सुनन को करना हस्त कमावन

आय काहूं बेहा वै जोग तप पूजा काहूं रोग सोग परमीजा काहूं पवन धार जात बेहाय संत बेहावे कीर्तन गाय काहूं बेहावे दिन रहन चालत काहूं बेहावे सो पिड़ मालत काहूं बेहावे बाल पढ़ावत संत बेहावे हर जस गावत काहूं बेहावे नट नाटक निरते काहूं बेहावे जिया एह हिरते काहूं बेहावे राज मह डरते संत बेहावे हर जस करते काहूं बेहावे मता मसूरत काहूं बेहावे सेवा जरूरत काहूं बेहावे सोदत जीवत संत बेहा

लोभी का धन प्राण आधार त्यों हर जन हर हर नाम प्यार किरसानी ज्यों राखै रखवाला मात पिता दया ज्यों बाला प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए त्यों हर जन राखै कंठ लाए ज्यों अंधले पेखत होए आनंद गूंगा भक्त गावै बहु छंद पिंगल पर्वत परते पार हर कै नाम सगल उदार ज्यों पावक संग सीत को नास ऐसे प्रासत संत संग बनास ज्यों साबुन का परिउजल होत नाम जपत सब भ्रम पहु खोत ज्यों चकवी सूरज की आस ज्यों चात्रक बूंद की प्यास ज्यों क्रंक नाद करन समाने त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने तुमरी कृपा ते लागी प्रीत।

ओट जाने ऊपर नानक वन्य वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

ज्ञान अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत लाल एक पाया, हर कीमत

निहाला हर सिमरत तृप्त अगाई संतो आत्म राम रविया सब अंतर कत आवे कत जाई संतो आदि जुगादी है पी होसी सब जिया का सुखदाई संतो आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रहया सब ठाई संतो मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भये दुसटारी जिसते लागे तिन्ह निवारी प्रभ जीओ अपनी कृपा तारी उदरे संत परे हर सरनी पच बिन से महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगति जोत तुम्हारी तुम समर्थ अकथ अगोचर रविया एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जना रे नारी राम कली महला।

माया सहज सेती मन बचिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों तांगा वो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाली।

मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया,

सदा शब्द सहावा शब्दो सहावा सदा सुहिला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गल्ली किने ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया पवित माता पिता कटंब सहत सियों पवित संगत सबाइया।

लीन है। कित संयम धोता जाय, मन तो वो हो शब्द लागो, हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू है हारिया,

जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बाहरो निर्मल बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मनसा सच समाणी जन्म रतन।

सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते गे मुख होवै, बिन सत

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजू, तत्तै सार ना जानी। तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुतिया रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागे।

दाता जे अग्न मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अग्न उधर में है तैसी बाहर माया माया अग्न सब इको जे ही करता खेल रचाया जां तिस पाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहु रहे लोक बिललाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपिए विचो आप जाए जिस

मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर नित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे।

प्यास न जाए, प्यास न जाए होत कितै, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आए, कह नानक होर अन रस सब विसरे, जा हर वसै मन आए, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रखिया, जोत राखी ता तू जग मह आया, मन चाहो पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

माया तुद कर्मक माया, हे कर्मक माया तुद शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो इस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे।

पौन बजाया बजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत ना जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया इहो साचा सोहिला साचे कर गावहु गावो ता सोहिला कर साचे जिथे सदा सच त्यावे सचो त्यावे जा तुद पावे गुरमुख जिना बजावे इहो सच सबना का खसम है।

भए सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया परपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो। अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। हर पाणा गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो। अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावई। आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया। मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे। तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे। सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया। सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो। सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया। कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया। हर गुरह पाणा दी बड़ियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। राम कली महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा। जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा। नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा। नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा। माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा। कहो नानक गुरबिन नाही सूजै। हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा।
प्राण आधारा मेरे गोविंदा, कृपाला मेरे कृपाला, दान दातारा मेरे कृपाला, दान दातारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राखै सो सच भाखै, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो प्रभ को

सुगड़ सुजान सुगड़ सुजाना सद परधाना अमृत हर का नामा चाक अगाणी सारंग पाणे जिनके भाग मथाना तिन ही पाया तिन्ह ते आया सगल तिसै का माणु कहो नानक थिर तक निवासी सच तिसै दी बाणु मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसै वधाई सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है मरे ना आवे जाई चूकी प्यासा पूर्ण आसा गुरमुख मिल निर्गुणिये कहो नानक घर प्रभ मेरे कै नित नित मंगल सुनिए राम कली महला पंजवां हर हर त्याए मना खिन ना विसारी है राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद बिचारी है बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा किल विख हरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने देख चलत दयाल सुन भगत बखाने जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा सर्ब जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसै प्रभ जी माने बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्ब इच्छा पुनिया जलने बुझाई शांत आई मिले चिरी बछुनिया आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद नित उठ गाइये संतन कै किल वेख सब दुख बनासन हर नाम जपिए गुरमंतन कै हर नाम लीजे अम्यो पीजै रैन दिनस अराधिये जोग दान अनेक क्रिया लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन भगत गावह गुण तेरे राम अंध मंगल गुर चरणी लागे पाए सुख कनेरे राम सुख निदान मिलया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाइये गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेन थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना
अपनी चरणी लाए राम। आठ पैर अपना प्रभ सिमरह, एको नाम त्याए राम। त्याए सो प्रभ तरे पवजल, रहे आवन जाना। सदा सुख कल्याण कीर्तन, प्रभ लगा मीठा पाना। सब इच पुन्नी आस पूरी, मिले सतगुर पूरिया। बिनवंत नानक प्रभ आप मेले, फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवां, संत सलोक। चरण कमल शरणागति, आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधिया, विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो, तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरिया, जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया, एक निमख मनहो ना विसरै। गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै। कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो। बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच। नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। संत पै संकट काटे नारायण, दयाल जियो। हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यो रंग लागा। कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो। सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान। नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। संत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो। भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै। साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै। जन्म मरण बेकार छूटे, फिर ना लागे दाग जियो। बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ अर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ। सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। संत सगल इच मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो। आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा। आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवां, रण झुंझनड़ा गाओ सखी। हर एक त्याव हो, सतगुरु तुम सेव सखी। मन चिंदियाड़ा फल पाव हो। राम कली महला पंजवां, रुति सलोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म। बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो। नानक प्रभ भरपूर, किलविख काटन पै हरन। सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो। नानक नीत त्याए, संत जस गाव हो वडभागी हो। कर कृपा भगवंत जियो, रुति महा मूर्त घड़ी। गुण उचरत शोभावंत जियो, गुण रंग राते तन ते जन। जिन्नी एक मन त्याया,
सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया, पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्व पापा हंत जियो, बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुद भावसी, नानक नाम आधार, संत सरण साजन परहु, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया।

संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ शरनागति जाका वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवे मरत हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो श्लोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम उठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नवनिध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

नानक प्रभ पूरन मिले दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर शंत रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोहो जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार ढोल श्रृंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांछत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बछोह जियो सलोक हर तन पाया सुहागिनी दौलत नाही कीत संत संजोगी नानका ग्रह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोट प्रिय प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम भने संत हिम कर रुत मन भावती माघ फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रह आए हर कंत जियो ग्रह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण त्रे पवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार शैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी उनमें अखर सुनो विचार उनमें अखर त्रिभुवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाली बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भये मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते कीमित करता जानै कह जानै गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावै सुनिया गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच

लाज मरंती मर गई घूंघट खोल चली सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली प्रेम बलाई रली स्यों मन मह शब्द आनंद लाल रती लाली पई गुरम

अगमय गोचर कीमत नहीं पाए, ता मिलिय जा लय मलाय। गुणवंती गुण सारे नीत, नानक गुरमत मिलिय नीत। काम क्रोध काया कौ गल, ज्यों कंचन सुहागा ढाल। कस कसवटी सह सो ताऊ, नदर सराफ बन्नी सचड़ाऊ। जगत पशु अहंकाल कसाई, कर कर तै करनी कर पाई। जिन कीती तिन कीमत पाई, होर क्या कहिए किस कहन ना जाई। खोजत खोजत अमृत पिया, खिमा गही मन सतगुर दिया। खरा खरा आखै सब कोए, खरा रतन जुग चारे होए। खात पी अंत मुए नहीं जानिया, हिन मह मुए जा शब्द पछानिया। अस्थर चीत मरन मन मानिया, गुर किरपा ते नाम पछानिया। गगन गंभीर गगन अंतर वास, गुण गावै सुख सहज निवास। गया न आवै आए न जाय, गुर प्रसाद रह लिवलाय। गगन अगम अनाथ अजोनी, अस्थर चीत समाध सुगोनी। हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी, गुरमत सार होर नाम बिहूनी। घर दर फिर था की बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धिया, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुरते मुक्त ना हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिस ढूंढ करै मह पाया। मेल भया सतगुरु मलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निसंग। पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद बेद बीचार। गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार। नानक गुरमुख पावै पार, चंचल चीत न रही ठाई। चोरी मिर्ग अंगूरी खाए, चरण कमल उर तारे चीत। चिर जीवन चेतन नित नीत, चिंतत ही दिसै सब कोए। चेतह एक तही सुख होए, चित वसै राचै हर नाय। मुक्त भया पत स्यो घर जाए, सीजै दे खुलै एक गंड। छिया नित देखो जग हंड, धूप शाम जे सम कर जाण। बंधन काट मुक्त घर आण, छाया शूशी जगत भुलाना। लिखिया किरत तुरे परवाना, सीजै जोबन जरुआ सिरकाल। काया सीजै पई से बाल, जापै आप प्रभु तिहु लोई। जुग

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझे सुमावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, झूर मरे देखे परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

बूझै आपे समझै आपे सूझै गुर का कहया अंक समावै निर्मल सूचे साचो पावै गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साची अखोट गुर कहया साकार कमावहु गुर की करनी काहे तावहु नानक गुरमत साच समावहु टूटै नेहो के बोलह सही टूटै बाहा दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटै गंठ पड़ै विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवै टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताई ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेस करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपने दीठी कंत सुजान दर राख्या गुरे आपने निरपव नाम बखान डूंगर वास तिखा कनी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय भावै तै दे गुरु द्वारै देवसी तिखा नवारै सोई टंडोलत टूंडत हौं फिरी तह तह पवन करार भारे तह ते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिली तिनकै हौं बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाऊं मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाऊं जिन नाम दिया तिस सेवसा तिस बलिहारै जाऊं जो असारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोई गुर प्रसादी तिस सम्मला ता तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना हो।

कंध ग्रंत विण नावै क्यों छूटी है जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

भीड बाणी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणी आप छाए छूटी है वड़ा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वडाइया जय पावे तैं दी।

दालद भंजन दुख दलन गुरमुख ज्ञान ध्यान धन गया बह चूरिया धन मह चीत गवार धन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार धन गया ता जान दे जे राच है रंग एक मन दी जय सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तावत रह गए मन में है शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए पेते गुर गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार नाना करत ना छूटी है विण गुर जमपुर जाही ना तिस एहो ना ओहो है अवगुण फिर पछताही ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान विण नावै निरभउ कहां क्या जाना अभमान थाक रही किव अपना हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रियो प्रियो जे करी मेले मेलन हार।

माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डुम्मण, माया भूली आथ, मन झूठा जम जोहया, अवगुण चलै नाल, मन मह मन उल्टो मरै, जे गुण होवै नाल, मेरी मेरी करमुए, विणनावै दुख पाल, गढ़ मंदर महला कहां, ज्यों बाजी दी बाण, नानक सच्चे नाम।

को अपना तन मन आगे देऊ। अस्त्र करता तू तनी तिस ही की मैं ओट, गुण की मारी हो मुई शब्द रत्ती।

राह गुरा पेहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई बिन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रब मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमाव है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लभ लोभ बुरे आईया छोडे मनहो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडे आईया जय भावे तैं दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचे नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो बीचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होआ प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार राड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई राड़े गारड़ तुम सुनो हो हर वस्ते मन माहि गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाहि सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है धन का चा बिखशार साहो सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै कौ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणै अपना खूलै बंद न पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हौमै खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै कौ ईसर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौ हौ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपिए हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर ना सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे जिसका क्या कर कहया जाए बलिहारी गुरे अपने जिन हिरदय दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरै सहज सुभाए विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाए मूर्ख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे नाम संभालो।

नाम संग्रहु लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या पविए सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाउ कौन तुम्हें क्या नाउ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआउ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाई आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई गुरमुख बूझै आप पछाणै सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहिऐ क्यों कर पाईऐ पारू चरपट बोलै औदू नानक देहो सच्चा बीचारू आपे आखै आपे समझै तिस क्या उत्तर दीजै साच कहो तुम पार जरामी तुझ क्या बैसन दीजै जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नै साणी सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम वखाणी रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासु अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासु सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच बिचारु रोस न कीजै उत्तर दीजै क्यों पाईए गुरुद्वारु इहो मन चल तो सच कर बैसै नानक नाम अधारु आपे मेल मलाए करता लागे साच प्यारु हाटी बाटी रह निराली रूख बिरख उद्यानी कांद मूल आहारू खाइए औदू बोले ज्ञानी तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए मैल न लागे काई गोरख भूत लहारी पा बोले जोग जुगत बिद साई हाटी बाटी नींद ना आवे पर घर चेतना डुलाई बिन नावे मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई हाट पटन घर गुरु दिखाया सहजे सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारम नानक तत् बिचारू दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा बारह अंतर एक सरेब हो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंदरा हौमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी हिंथा झोली भरपुर रहिया नानक तारे एक हरी साचा साहिब साची नाई परखै गुर की बात खरी ऊंदो खप्पर पांच भू टोपी काया कड़ासन मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम सुमाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाई
कमन सोत्रे पवन रहे आसमाई, कट कट गुप्ता गुरमुख मुक्ता, अंतर बार शब्द सो जुगता, मनमुख बिन सह आवै जाई, नानक गुरमुख साच सुमाई, क्यों कर बादा सरपन खादा, क्यों कर खोया क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, यो तत बिचार सो गुरु हमारा, दुर्मत बादा सरपन खादा, मनमुख खोया गुरमुख लादा, सतगुरु मिले अंधेरा जाई, नानक हूं मैं मेक समाए, सुन निरंतर दीजे बंद, उड्डे ना हंसा पड़े ना कंद, सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा, किस कारण ग्रह तज्यो उदासी, किस कारण एहो भेख निवासी, किस वक्खर के तुम बन जारे, क्यों कर साथ लंघावो पारी, गुरमुख खोजत भये उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वक्खर के हम बन जारी, नानक गुरमुख उतर सपारी, चित बेद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ एहो मन लाया, चित बेद आसा मनसा खाई, चित बेद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो बीचार, सतगुर कै जन्मे गवन मटाया, अनहद राते इहो मन लाया, मनसाया सा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई, त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार, आद को कवन बीचार कथियले, सुन कहां घर वासो, ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले, घट घट कवन निवासो, काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निरभउ घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराइए, गुर कै शब्द हउमे बिख मारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचिया किस शब्द पछाण, नानक ताका दासु, कहां ते आवे कहां एहो जावे, कहां एहो रह समाई, एस शब्द को जो अर्थावे, तिस गुर तिल ना कमाई, क्यों तत्ते अवगत्ते पावे, गुरमुख लगे प्यारू, आपे सुरता

वह गत मित शब्दे पाई आद को विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुरु ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुरु बचनी अवगत समाई है।

नानक साचर ते सुख जान, गुरमुख साचे का भउ पावे, गुरमुख बाणी अखाड़ कढ़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साच समावे, गुरमुख परचै वेद बीचारी, गुरमुख परचै करियै तारी, गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचै अंतर विद जानी, गुरमुख पाईऐ अलाखे अपार, नानक गुरमुख मुक्त द्वार, गुरमुख अकथ कथै बीचार, गुरमुख निबहै सब परवार, गुरमुख जपियै अंतर प्यार, गुरमुख पाईऐ शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हउमै जाल समाई, गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमह उपत खपत सो बाजी, गुर कै शब्द रपै रंग लाई, साच रतो पत स्यों घर जाय, साच शब्द बिन पत नहीं पावै, नानक बिन नावै क्यों साच समावै, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख भवजल तरियै सच सुधि, गुरमुख सर अपसर विद जानै, गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै, गुरमुख तारी पार उतारी, नानक गुरमुख शब्द निसतारी, नामे राते हउमै जाए, नाम रते सच रही समाए, नाम रते जोग जुगत बीचार, नाम रते पावह मूख द्वार, नाम रते त्रिभवन सोजी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए, नाम रते सिद्ध गोष्ट होए, नाम रते सदा तप होए, नाम रते सच करनी सार, नाम रते गुण ज्ञान बीचार, बिन नावे बोले सब वेकार, नानक नाम रते तिनको जयकार, पूरे गुरते नाम पाया जाय, जोग जुगत सच रह समाय, बारह मह जोगी परमाय, सन्यासी छे चार, गुर कै शब्द जो मर जीवै, सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे, देखो हृदय बीचार, नानक वड्डे से वड भागी, जिन्नी सच रखिया उर धार, गुरमुख रतन लह लिवलाय, गुरमुख परखै रतन सुभाय, गुरमुख साची कार कमाय, गुरमुख साचे मन पतियाय, गुरमुख अलख लखाए तिस भावै, नानक गुरमुख चोट ना खावै, गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान, गुरमुख पावै दरगाह मान, गुरमुख पौ भंजन प्रधान, गुरमुख करनी कार कराई, नानक गुरमुख मेल मलाई, गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद, गुरमुख पावै घट घट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावै, गुरमुख सगली गणत मटावै, गुरमुख राम नाम रंग राता, नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर भरमै आवै जाई, बिन

आपना पुन्नंग घट घट सुन का जाने पेव आदि पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रति से कैसी जिस ते उपजे तिस ही जैसी कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवै पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचै राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाई मिलिए सुख होवे गुरमुख जागै नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारै कहते मुक्त शब्द निस्तारै गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गवाए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझै चोटा खाए जम दरबादे कोई न राखै बिन शब्द नाहीं पत साखै क्यों कर बूझै पावै पार नानक मनमुख ना बुझै गवार कबुद्ध मिटै गुर शब्द बीचार सतगुर भेटै मूख द्वार तत न चीनै मनमुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए मानै हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावै मान साच वखर धन पल्लै होए आप तरै तारे पी सोए सहज रत्ता बूझै पत होए तां की कीमत करै ना कोय जह देखा तह रहिया सुमाए नानक पार परै सच पाए सो शब्द का कहां वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है इस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर लख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाए सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाए शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने जेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाणे त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले चीने अलख अपारू त्रै गुण मेटै शब्द वसाई ता मन चूकै अहंकारू

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुंदहा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृपता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी इहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै इहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा इहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे इहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

त्यागी इब तब साचो साचा हिरदा दे न होती ओदू तौ मन सुन रह बैरागी नाव कमल असथंभ न हो तो ता निज कर बस तौ पवन अनरागी रूप न रेखिया जात ना होती तौ अकुल लीन रह तो शब्द सो सार गौन गगन जब तब है न हो तो त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार वर्ण भेख असरूप सो एको एको शब्द वडाणी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई हमै विच जग उपजै पुरखा नाम विसरै दुख पाई गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै हमै शब्द जलाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचै रह समाई नामे नाम रह बैरागी साच रखिया उर धारी नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बीचारी गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई गुरमुख निज घर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार नानक बिन गुर मुआ जन्म हार गुरमुख मन जीता हूं मैं मार गुरमुख साच रखिया उर धार गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार गुरमुख दरगाह ना आवै हार गुरमुख मेल मलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणे शब्द काल बेड़ा सुन तू औदू बिन नावै जोग ना होई।

है सहसा गया बलाई, ना किस बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाए, अंब है सेती अंब रलिया, बहुड़ ना निकसिया जाए, नानक।

कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिय, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हौ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हौ मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कह, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे, दारू भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भव जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ, जा कौ नदर करे पौड़ी, दूजा भाउ रचायो त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मुखंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे इहो तप काले, सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा इहो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावै मान। पौड़ी, रात दिन स उपायन, संसार की वर्तन, गुरमती घट चानना, अनेर बनासन। हुक्मे ही सब साजियन, रबिया सब वन त्रिन, सब किसे आपे आप है, गुरमुख सदा हर भन। शब्दे ही सोजी पई, सच्चै आप बुझाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए ना आखियन, जिनके चित में भरम, किस दै दितै नानका। तेहो जेहा धर्म, अपै निरंजन परम पद, ताका भूखा होए, तिसका भोजन नानका। विरला पाए कोई। महला तीजा, अभ्यागत एह ना आखियन, जे पर कर भोजन करेन, उदरै कारण अपने, बहले भेख करेन। अभ्यागत से नानका, जे आत्म गौण करेन, पाल लहन सहो अपना, निज कार रहन करेन। पौड़ी, अंबर धरत विछोड़ियन, विच सच्चा असराव, घर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाव। सब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच समाव। सच्चा आप तखत सच्चा, वह सच्चा करे नियाव। सब सच्चो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई।

लोभ रत विचों जाए। ज्यो बै संतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया। ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। भरम गया ता जागिया चूका अज्ञान अंधार। तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना शोभावंती नार। मनमुख शिंगार ना जाननी जासन जन्म सबहार। बिन हर भगती शिंगार करह नित जमह हुए खुआर। सह सारे विच शोभ ना पाईनी अगै जी करी सो जाने करतार। नानक

महला तीजा बिन सतगुर सेवे शांत ना आवी दूजी नाही जाए जे बहुतेरा लुचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे भाई खुआई तिन जम्मन मरन ना चुकई हौ मैं विच दुख पाई जिन्नी सतगुर स्यों चित लाया सो खाली कोई नाही तिन जम की तलब ना होवे ना होए दुख सहाय नानक गुरमुख उबरे सच्चा शब्द सुवाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप निश्चल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निज कर वासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरतै सच नानक हुक्म है जो बुझै सो फल पाए सच कथनी बदनी करता फिरै हुक्म ना बुझै सच नानक हर का पाणा मन्ने सो भगत होए बिन मन्ने कच न कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार होए थाओ कथाओ ना जाननी उने अंतर लोभ विकार होए अपने सवाए आए बह गल्ला करह ओना मारे जम जंदार अग्गे

विचार सतगुर मिले तन आम दड़ाई सब किल विख कटन हार नाम जपे नामो अरादी तिस जन को करहो सब नमस्कार मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सचियार जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवन हार पौड़ी तुद जेवन दाता नाही किसे आख सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो हो मैं जाई है रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसे प्याई सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन जे सतगुर भावै सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानक आए से परवान पहे जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंधला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए भाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन कूड़ कसत कमावंदे पर निंदा सदा करेन ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डुबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिष्ट सब कीती एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती।